0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

क्षिप्र विघ्नेश जनक कृत्यंतर सश्रि कृत्यादिकुटिला प्रांत मंत्र सिंहासन स्थित क्षुद्र प्रयोग संहर्ता क्षुद्र वृक्ष कुठारिक क्षुद्राचल महावज्री क्षुद्र कर्म जनातक कुंबीजश्रवणानंद क्षुंकार हृदयालय क्षुं क्षुं स्मरण सान्निध्य क्षुं क्षुं क्षुं मंत्रनायक क्षेमालय क्षेमकर क्षेमारोग्य फल प्रद क्षेम संपत्प्रदाता च क्षेत्रपाल समर्चितः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रफलदः क्षेत्राक्षेत्र सुपालकः क्षौद्रसाराभिषिक्ताङ्गः क्षौद्रसारमनोहरः क्षौम्बीजः क्षयगुल्मादि सर्वरोगविभञ्जनः नकाररूपो नार्नार्थो नकाराक्षो नकारविते नकारशृङ्गनिलयो नानावर्गफलप्रदः नकारबिन्दुमध्यस्थो नार

मूर्तिद्विपञ्चकतनुर्मूर्त्येकादशकात्मकः मूर्तिद्वादशपूरीशो मूर्तामूर्तान्तरात्मकः मूर्तित्रयोदशी पूज्यो मूर्तिपञ्चदशी मनुः मूर्तामूर्तद्विभेदश्च मूर्तिषोडशनामधृति मूर्त्यात्मपञ्चविंशाङ्को मूर्तिषट्विंशदुज्ज्वलः मूर्त्यष्टाष्टकरूपी च मूर्तिरुद्रशताग्रगः मूर्तिसाहस्ररुद्रेशो मूर्ति

धी प्रभुर्धीमतिर्धीर्धीर्धीरभक्तजन प्रिय धुत्तूरकुसुम प्रीतो धूपदीप मनोहर धूमादिग्रह दोषघ्नो धूर्जटिर्धूम्रवासभृते धेनुमुद्रा प्रिजो धेनु वत्सलो

रघुमति वन सुंदरी कांचित दिव्य चंचरीकाजा धवलांगाज पिंगजटाजूटाज रविचंद्रानलनेत्राय श्रीमते भगवते तुभ्यं मम च

गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारतरं परं कथ्यते देवदेवेशी सावधानेन तच्छृणु त्रैलोक्यमोहनं नाम कवचं मन्त्रविग्रहं सर्वमन्त्रमयं दिव्ये शैवषट्कसमन्वितं कवचं शुभदं भद्रे दक्षिणामूर्तिशर्मणः शिवस्य कवचस्यास्य चतुर्मुखऋषिस्मृतः गायत्रं छन्द आदिष्टं देवता दक्षिणामुखः श्रीमेधा दक्षिणामूर्ति रूपश्री परशंकरः नमो बीजं तथा स्वाहा शक्तिरत्र प्रकीर्तिता प्रणवं कीलकं देवी रक्षणे विनियोगता अस्य श्री त्रैलोक्यमोहन दक्षिणा।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Srikantha Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambudiri.
2: சத்யாத்ம சத்தா ரூபம்,
3: சத்யாத்மான்னு இருக்கு அந்த ஆகாச சரீரம் பிரம்மா, அதனுடைய வியாக்கியானமா இருக்கு. சத்யாத்மான்னு இருக்கு இல்லையா, சத்யாத்மா சத்யாத்மா
2: சத்தா ரூபம்,
3: சத்தா ரூபம் இத்தர்த்தம் சத்தா ரூப.
2: பிராணாராமம் பிராணஹ சகலாதார பூதா சிதம்பர சக்தி உச்சதே ஸ்வரூப பூதாயாம் தஸ்யாம் ஏவ ஆராமஹ யஸ்ய தத் பிராணாராமம்.
3: பிராண சப்தேனாபி சாயவ சிச்சக்தி உச்சதே, ஆகாச சப்தேன யதா சிச்சக்தி உச்சதே பிராண சப்தேனாபி சிச்சக்திரேவ உச்சதே.
2: மனஹ
3: தரிஹி பிரம்ம நோச்சதே என்று சிந்தனியம். சிச்சக்தி விசிஷ்டம் பிரம்ம, சிச்சக்தினா வேறொரு பதார்த்தம் இல்லை, அது பிரம்மத்தோட சேர்ந்தது. அது
2: மன ஆனந்தம், மனசிய
3: மன ஆனந்தம் பிரம்மத்தினுடைய விசேஷணம். மன ஆனந்தம்,
2: மன ஆனந்தம்,
3: மன ஆனந்தம்
2: மனசியானந்த
3: மனசேவா ஆனந்த இத்துக்கே மனசா இது மனக்கரணக ஆனந்த மனசி மனசி இது வக்தவியம். கதம் ஏவம் பாஷ்யகாரைஹி லிகிதம் இது அத்ர ஏதே லிகந்தி சரீரே சுகம் இது வத உபசாரிகா சப்தம்யா அதிகரணத்வ நிர்தேசஹ பாஷ்யே இது உபசாரிகா இது பாஷ்யகாரைஹி உபசாரிக ரூபேண உக்தம் மனசா ஆனந்தஹ இத்யேவ விவக்ஷா. மனக்கரணகத்துவவிவக்ஷாயாம் ததைவ பவதி, பரந்து மனசி இதி சரீரே சுகம் இத்யுச்யதே கலு. சரீரே சுகம் ஆத்மன்யேவ சுகம் இதி வக்தவ்யம் சரீராவச்சேதேன தத்வத்.
2: அத்ராபி ஆனந்த இதி சிதம்பரம் ப்ரகிருதிஹி உச்யதே,
3: அத்ராபி ஆனந்த சப்தேனாபி தாசா ஏவ ப்ரகிருதிஹி உச்யதே. இப்போ பதத்ரயம் லப்தம், ஆகாசபதம் பிராணபதம் மனப்பதம் சிச்சக்தேஹே கதனாய.
2: மனசப்தேனந்திதம்பரப்பிரகிருதிரேவ
3: உச்சதே, ஆகாச சப்தேனாபி சிதம்பர பிரகிருதிரேவ உச்சதே. இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீர்கள், அதுக்கு பிரமாணம் என்ன கேட்டா அதுக்கு பிரமாணம் காமிக்கிறார்.
2: ததா ச ஸ்ருயதே யதேஷ ஆகாச ஆனந்தோ ந ஸ்யாத்,
3: சாமானாதிகரணேன பிரயோகம் அஸ்தி அயம் ஆகாசஹ ஆனந்தஹ இதி. தரி ஆகாச சப்தேனாபி சஹ உச்சதே ஆனந்த சப்தேனாபி உச்சதே ஸ்ருதௌ யதேஷ ஆகாசஹ ஆனந்தோ ந ஸ்யாத் இதி அஸ்தி. கோஹ்யேவ அன்யத் அன்யாத் கஹ பிராண்யாத் எதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ நியாத் ஒரு வாக்கியம். அந்யாத் தெரியும், அந்யாத் அனிதி அனிதி ஸ்வசிதி பிராணிதி பிராயண சைவ அர்த்தா ஸ்வசிதி பிராணிதி அனிதி சேஷ்டதே இத்தியர்த்தேபி அனிதி இத்தியஸ்தி. அந்யாத் கஹ சேஷ்டேதா கஹ பிராண்யாத் கஹ பிராணன வியாபாரம் குறியாத் கஹ சுவாசோச்சுவாசம் குறியாத் இத்யுக்தே சர்வம் தததீனம் இது. எதேஷ ஆகாஷ ஆனந்த ந ஸ்யாத், ஆகாஷ ஆனந்த இது ஏகைவ பதார்த்த ஆகாஷாத்மக ஆனந்த பரமாத்மா இது நசியாத் அர்த்தம். பரமாத்மா இது நசியாத் தரி கிம் சேஷ்டயதா இத்தியம் அந்தலோகத்துல ஸ்ருதே தாத்பரியம். பரமாத்மான்னு ஒரு பதார்த்தம் இல்லாத போனால் கிம் எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொல்றது இல்லையா, அந்த அர்த்தத்துல ஸ்ருதி அவ்வளவுதான். அத்த எதேஷ ஆகாஷ ஆனந்த நசியாத், ஆகாஷ ஆனந்தான ஒரே பதார்த்தத்தை ரெண்டு வார்த்தையால சொல்லியிருக்கார். அதனால
2: அமிர்தம்
3: शिवता शिवता इत्युक्ते शान्तिः इति मङ्गलम् शान्तिरेव शिवता शिवत्वं शिवता सम्पन्नम् इत्युक्ते शिवत्वविशिष्टं शिवम् इत्यर्थः अमृतम्
2: अमृतम् अनादिमुक्तम्
3: अमृतम् अनादिमुक्तम् अर्थः अनादिमुक्तः सदा मुक्तः नित्यमुक्तः इत्युक्ते जीवान् व्यावर्तयितुं
4: सोऽपि
3: मुक्तो भविष्यति
4: भविष्यति परन्तु अनुग्रहः
3: अनुग्रहवशात्
4: इदानीम् अत्र तु मुक्तिस्तु न प्राप्यते स्वतः वर्तते
3: बन्धोत्तरं मुक्तः नित्यमुक्तो न बन्धम् अप्राप्यैव नित्यमुक्तः परमात्मा मुक्तः इत्युक्ते पूर्वं बद्धः आसीत् न चिन्तनीयं परमात्मविषये मुक्तः मुक्तः इति शब्दः आगच्छति तर्हि परमात्मा अपि पूर्वं कदाचित् बद्धः आसीत् वा इति न चिन्तनीयं नित्यमुक्तः अनादिमुक्तः अत्र
2: सच्चिदानन्दरूपं परमाकाशस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपानन्दं ब्रह्मस्वरूपानन्दं मनसा एव अनुभवति बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति सिद्धं मन आनन्दम् इत्यनेन
3: तत्र चिच्छक्तिः मनस्सुन् सोल्रद् बोलिर्क मयापि न ज्ञायते द्रष्टव्यम् अग्रे स्पष्टी भवेत् पश्यामः अत्र सच्चिदानन्दरूपपरमाकाशरूपं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं परमाकाशरूपं यद्ब्रह्म तद्ब्रह्म किं करोति स्वरूपानन्दं मनसा एव अनुभवति मया उक्तं पूर्वमेव उक्तं बाह्यकरण अपेक्ष क्रियते
4: बाह्यकरण अपेक्षा नास्ति इत्युक्ते
3: बाह्यकरणानि न सन्ति एव न सन्ति अपेक्षा अपि नास्ति
4: सन्ति चेत् एव अपेक्षा नास्ति इति वक्तुं शक्यते
3: तथा विवक्षा नास्ति इति चिन्तयामि परमात्मनः बाह्यकरणानि न स्वीकर्तव्यानि वस्तुगत्या श्रुतिरेव न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इत्यस्य किञ्चित् सङ्कोचकरणेपि कश्चित् अर्थः वक्तव्यः खलु कृतानि बाह्यकरणनिरपेक्षम् इत्युक्ते बाह्यकरण तत्र भवतां प्रश्नकः बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति कदा वक्तव्यं बाह्यकरणानि सन्ति परन्तु अपेक्षा न क्रियते इति प्रसक्तिरेव नास्ति चेत् निरपेक्षम् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति तद् व्यवहर्तुं शक्यते अहं किं चिन्तयामि परमात्मनः अपेक्षा बाह्यकरणाभावेपि जीवानां बाह्यकरण अपेक्षा अस्ति खलु तर्हि जीवानां बाह्यकरणापेक्षा अस्ति इति कृत्वा आनन्दानुभवाय आनन्दानुभवाय जीवानां बाह्यकरणापेक्षा अस्ति इति कृत्वा परमात्मनोपि तथैव स्यात् इति प्रसक्तौ परमात्मनः बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति वक्तुं शक्यते परमात्मनः विषये बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति वक्तुं परमात्मनः एव बाह्यकरणानि अपेक्षन्ते इति नास्ति बाह्यकरणसापेक्षः आनन्दः कुत्रचित् प्रसिद्धः खलु तत् परमात्मनो नास्ति इति वक्तुं शक्यते अप्रसक्तप्रतिषेधो नास्ति बाह्यकरणसापेक्षः आनन्दः अस्माकं वर्तते प्रसिद्धः जीवानां प्रसिद्धः सः तथा नास्ति परमात्मनः इति वक्तुम् एवं प्रयोगः सम्भवति
2: इदमेव ज्ञापकं ब्रह्मभावम् आपन्नानां मुक्तात्मनां निरतिशयस्वरूपानन्द अनुभवसाधनं बाह्यकरणनिरपेक्षम् अन्तःकरणम् अस्ति इति
3: मुक्तानामपि अन्तःकरणम् अस्ति तीर्मानम् इति वदतु मुक्तानामपि अन्तःकरणम् अस्ति बाह्यकरणं नास्ति तत्र किं ज्ञापकं किं प्रमाणम् इदमेव प्रमाणम् इदमेव ज्ञापकं कुतः परमात्मनः आनन्दानुभवाय स्वरूपानन्दानुभवाय मनः अपेक्षते मत इन्द्रियमाः कृता इल्या पाकणम् अग्रिमेषु तद् तत्पराणि अधिकरणानि आगच्छन्ति तदा स्पष्टी भवति मयापि पूर्णं निश्चित्य नोच्यते खलु अतः पङ्क्त्यर्थः उच्यते क्रमेण अस्माकम् आगच्छति सर्वम् इदानीं किमुक्तम् इति स्पष्टं परमात्मनः स्वरूपानन्दानुभवाय मनः अस्ति इति ज्ञायते तर्हि मुक्तानां मनः अस्ति इति लभ्यते अन्यथा तत् परमात्मना अपि नापेक्षेत साधारणम् एप्डि केळ्वरं स्वरूपानन्दस्य अनुभविकृतके यद् मनस् स्वरूपं तानेन तथापि परमात्मनः अस्ति इति ज्ञायते तत् कथं किमर्थं कल्प्यते इत्युक्ते न कल्प्यते श्रुत्या उच्यते इति कल्पिक मुडियाद् कल्पने पण्णवे मुडियाद् स्वरूपमेव आनन्दम् आयुतुन स्वप्रकाशम् आयुतुन मनसि यद् केळ्ता वरं परन्तु श्रुतिर्वदति मन आनन्दमिति तर्हि मनस्सहकारेण अनुभूयमानः आनन्दः इति वर्तते तर्हि मुक्तानामपि तथैव इति निश्चेतुं शक्यते।
2: अतः बाह्यकरणनिरपेक्षेण शुद्धबोधशक्तिरूपेण मनसा स्वरूपानन्दम् अनन्तम् अनुभवत्।
3: ब्रह्म नित्यतृप्तम्, नित्यतृप्तत्वम् एवं रूपेण व्याख्यातव्यम्। इदानीं स्पष्टीकृत्य उक्तवान्, ततो गत्वा अयं विषयः कः स्पष्टीकृतः इदानीं पश्यतु। एकः अंशः उक्तः, बाह्यकरणनिरपेक्षेण शुद्धबोधशक्तिरूपेण मनसा, அந்த சிச்சக்தியை தான் மனசுன்னு சொல்றது, வேற தனி பதார்த்தம் இல்லை. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு திரவியம் தனி திரவியம் கிடையாது, அது அது மனசை ஸ்தாபனி பரமாத்மனா மனஹா இத்துக்கே எதுக்கு அங்கங்க ஓடுற ஏதோ ஒரு திரவியம் மாதிரி நினைக்க கூடாது. சிச்சக்தி, அந்த சிச்சக்தியை தான் மனசு வச்சிருக்கு தெரியுது.
4: ஆனந்த சப்தேனாபி சிச்சக்தி உச்சது.
3: ஆனந்த சப்தேனாபி
4: சிச்சக்தி அனுபவத்தும் எது எது மனஹா இத்துக்கே சோ ததபி சிச்சக்தி,
3: அப்படிதான் தெரியுது. சுத்த போத சக்தி ரூபேண
4: சிச்சக்தி சமவேதா சக்தி இது உச்சி. சிச்சக்தி சமவேதா சக்தி இது
3: சத்யம்.
4: தர்ஹி யதி மனஹ
3: உச்சதே தத் சக்திரேவ மனஹ இதி அன்யா அன்யத் கிம்பி மனஹ நோக்தம். இதானி பஷந்து பாஹ்ய கரண நிரபேக்ஷண சுத்த போத சக்தி ரூபேண மனசான் போட்டிருக்கு.
4: சுத்த போத சக்தி விசேஷ விசேஷம். தர்ஹி ததபி மனஹ சமாயேன வக்தம்.
3: சமாயா இது நயாயிகானாம் ரீத்யா அஸ்தி, तथैव वक्तव्यं च नास्ति। मुक्तात्मनाम् ईश्वरस्य च मनोविशेषः अस्ति, मनोविशेषः अस्ति इति व्याख्यानम्। यतः अस्माकं रीत्या यादृशं मनः तादृशम् इति न चिन्तनीयम् इति कृत्वा मनोविशेषः अस्ति इत्यत्र इति नित्यतृप्तत्वस्य स्वार्थप्रयुक्तसृष्टिवैषम्यप्रसक्त्यभावसिद्धौ उपयोगमाः न तस्य कदापि इति अग्रे गतम्, व्याख्यानम् अग्रे गतम्। अस्तु, इदं क्रमेण स्पष्टीभवति।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन मनीष पंचकम, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री अवधेश चैतन्य जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: भगवत भक्तजन आज केवल प्रथम श्लोक का ही उच्चारण करेंगे।

भगवत भक्तजन, श्लोक का अर्थ बड़ा ही सरल है। वो जो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता, संपूर्ण दृष्टि उस चैतन्य में, उस संविद में, उस ज्ञान में दे रहे हैं, जब तक साधक उस चैतन्य से परिचय नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके व्यवहार में शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर जो पूर्व संस्कार से ग्रसित थे, ब्राह्मणत्व के अभिमान भी रहा और उस अभिमान को, उस अहम को दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ एक निकृष्ट वेश धारण करके आविर्भूत हुए। इस संसार में सबसे अछूत और उससे निकृष्ट जाति कुछ नहीं हो सकता है, वो है चांडाल, जो डेड बॉडी, मृत देह को जलाते हैं, स्मशान में रहते हैं, कुलाचार धर्माचार को, धर्म शास्त्र को अगर देखे तो उस चांडाल के अगर छाया भी स्पर्श हो जाए तो स्नान करने की विधि है। भगवत भक्तजन, व्यवहार में हम हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से शायद कुछ भेद को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु जब हम साधना करते हैं, चित्त को शुद्ध बनाना चाहते हैं, उस परम तत्व को अनुभव करना चाहते हैं, तब कहीं हमें इस ऊपर दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से अंदर की ओर जाना पड़ता है, जहां जाकर के बाह्य वेश, बाह्य आचार, बाह्य आकार, बाह्य प्रकार की कोई मूल्य होता नहीं। इसीलिए भगवान आदिदेव महादेव एक ऐसा रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, संपूर्ण मानवता को वो यह शिक्षा देने के लिए कि घोर से घोर तर जोनि में क्यों ना वो आए, वहां भी मैं ही हूं, चैतन्य रूप से प्रदीप्त मैं ही हूं। भगवत भक्तजन, उस चैतन्य को पहचान लेने से सर्वात्म भाव में आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। संपूर्ण भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा में जो साधनाएं हैं, उसमें नैतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, कुछ भी आप निश्चय करके रखे, सभी धर्म ग्रंथों आचार्यों के मन में यही एकमात्र अभिलाषा है कि अपनी वेष्टिता, परिच्छिन्नता को त्याग करके सर्वात्मता को प्राप्त करें। इसलिए ऊपर की दृष्टि से आप सर्वधर्म समन्वय का कितना भी बड़ा आयोजन कर लीजिए नारायण, वो सर्वधर्म समन्वय होता नहीं है। जब तक इस अद्वैत चेतना तक आपकी दृष्टि न पहुंचे, तब तक भले ही हम एक मंच में अनेक लोग बैठ सकते हैं, भिन्न धर्मावलंबी, परंतु कहीं न कहीं वो चैतन्यता से जो अलग है, ऐसा कह करके हम एकात्मता को प्राप्त नहीं कर सकते।
संपूर्ण व्यवहार हम उस चैतन्य से करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उस चैतन्य से बेखबर भी रहते हैं। कभी भी हम किसी मुर्दे मृत व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, करते हैं, क्यों? जो रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जो हमारे भावों को समझ सकते हैं, वो प्रदान उत्तर दे सकते हैं, उनसे ही हम व्यवहार करते हैं। तो आप अल्टीमेट किससे व्यवहार कर रहे हैं? किसी जड़ से, कोई बॉडी से, अथवा कोई और सत्ता है जो इस बॉडी के अंदर से अपने को अभिव्यक्त करता है और आपके भावों को, आपके आदर को, आपके श्रद्धा को ग्रहण करके वो अपनी तरफ से रेस्पॉन्स भी देते हैं। वो है कौन? इसीलिए छोटा सा बालक जन्म हुआ और पिता जाकर के उसको बड़ा प्यार से, लाड़ से उसको बुलाते हैं, तालियां बजाते उनके सामने। उनके बोध नहीं है, वाणी नहीं है, परंतु वो देख करके कुछ देर देखा, फिर मुस्कुरा दिए। नारायण, कभी भी हमने जानने के प्रयत्न किया कौन मुस्कुराया? उस बालक के कंठ स्वर नहीं है, अभी वाणी प्रकट नहीं है, उस बालक के रूपक ग्रहण सामर्थ्य उतना नहीं है, उस बालक के शब्द सामर्थ्य भी उतना प्रकट नहीं हुआ है, उस बालक के चेतना में भी उतनी प्रकटता नहीं है, फिर भी कौन है जो आपके आदर को, आपके स्नेह को, प्यार को समझा और अंदर से रिस्पॉन्स किया कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं? कौन है वो? जो चैतन्य है, वो जो सत्ता है, जिसको आप चैतन्य कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, कोई भी नाम लीजिए, आचार्य शंकर आदि महादेव के समक्ष उस चैतन्य को जिन्होंने जाना, और ऐसे ही कह रहे जो कि हमेशा स्फुट तरा जागृत अवस्था में, स्वप्न और सुषुप्ति में भी जो नित्य निरंतर प्रकाशमान है, केवल एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही नहीं, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुसु, ब्रह्मा से लेकर के एक चीटी, पिपीलिका चीटी तक जो एक सत्ता विराजमान है, वो दृष्टि हमें लानी है। इसलिए भगवत भक्तजन, जब तक हम उस चैतन्य, उस सत्ता से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारी साधना, हमारी आराधना पूरी नहीं हो सकती है। परिच्छिन्न रूप से जब तक आप साधना करते हैं, वो साधना के अधमाधम भाव है, उत्तम ब्रह्म सद्भाव उपनिषद कहते हैं। जिस चेतना में आप उस चैतन्य को अनुभव कर सकते हैं और उस चैतन्य में आपके सारी व्यवहार है, उस दिन आपकी साधना आराधना पूर्ण की ओर जा सकती है। इसलिए सारा व्यवहार जो है ना, इस आकार प्रकार को लेकर के, और जब तक इस आकार और प्रकार को लेकर के आप व्यवहार करते हैं, तब तक निश्चित रूप से विकार है। आप विकार से रोक नहीं सकते हैं अपने को। और हमारी धर्म ग्रंथ आचार्य यह उपदेश देते हैं, इस विकार को अगर दूर करना है तो इस विकार के अंदर जो अविकार, इस रूप के अंदर जो अरूप, उस सत्ता से परिचय प्राप्त करो।
इसलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर ध्यान से देखा कि सामने जो उपस्थित है वो और कोई नहीं है, आदिदेव महादेव है, और उन्होंने अपना स्तुति उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जो चैतन्य सत्ता है, जो चित सत्ता है, जो सबके अंदर अनुस्यूत है, सैवा अहम, किस प्रकार से साधक स्व तक ले आते, सैवा अहम, वो चैतन्य ही मैं हूं। सैवा अहम न च दृश्य वस्तु इति, जो अपने से भिन्न नाम रूप रूप से पृथक रूप से प्रतीति गोचर है वो मैं नहीं हूं। वो जो चैतन्य है वो मैं हूं। दृढ़ प्रज्ञा पियस्यास्ति चेत, ऐसा प्रज्ञा जिनके अंदर दृढ़ हो गया। महाराज जब सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तब तो लगता है कि वह चैतन्य है, वो मैं हूं, वो सर्वत्र ओतप्रोत है, जगत साक्षी के रूप में वही चैतन्य विद्यमान है। परंतु वो जो स्थिति है चैतन्य की प्राप्ति की, वो दृढ़तर नहीं होने हो सकता है अथवा होता नहीं है। आचार्य शंकर प्रार्थना में कह रहे हैं कि वो जो प्रज्ञा है, चैतन्य है, जिनके प्रज्ञा दृढ़ हो गया है, अर्थात जिनके सारा व्यवहार जो है चैतन्य में ही, चैतन्य के साथ ही होता है, यस्यास्ति सेत, अब अंतिम चरण में अपने व्यक्तित्व को समर्पण के एक भाव है, चांडालस्तु सतु दिजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम, चाहे वो घोरतर जोनि क्यों ना प्राप्त करता हो, चाहे वो चांडाल हो, वो मेरे गुरु है। भगवत भक्तजन अध्यात्म शास्त्र में अथवा अध्यात्म जीवन में गुरु के एक अपूर्वता है। इस व्यक्तित्व में ऐसा कोई है जो पूर्ण रूप से समर्पण करने नहीं देते हैं। परंतु जब भी हम आचार्य के जीवनी को देखते हैं, उनके ग्रंथ रचनाओं को देखते हैं, स्तुतियों को पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं उनके शब्द के द्वारा, हमेशा वो गुरु के प्रति एक अपूर्वता, एक अलग दृष्टि। इससे पूर्व भी हमने विचार किया एक बार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणामूर्तये, वहां पर भी आचार्य गुरु के प्रति एक समर्पण। इसलिए भगवत भक्तजन गुरु कौन है और जीवन में गुरु की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस पर अनेक चर्चाएं हम लोगों ने सुन रखा। परंतु जब कोई प्रतिष्ठित आचार्य, कोई अवतारी पुरुष जब उस गुरु तत्व के ऊपर कुछ कहते हैं, तो इतना तो निश्चय है कि गुरु जीवन में आवश्यक है एवं व्यक्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, उस चैतन्य सत्ता को पहचान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप एक ऐसे अदृश्य अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आपके लिए कोई नहीं है, अज्ञात वह जगत है, तो उस अज्ञात जगत में जाने के लिए कोई तो चाहिए जो आपको गाइड कर सके।
तो अतीन्द्रिय जगत में जो गाइड करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं, वही है गुरु। इसलिए अध्यात्म जीवन में गुरु की भूमिका अनन्य है। और कई लोगों के मन में ऐसा भी प्रश्न होता है कि जीवन में गुरु अवश्य किसी व्यक्ति को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए क्या? आपके इस प्रश्न के ऊपर अनेक तर्क, अनेक लॉजिक हो सकते हैं, परंतु नारायण इतना भी समझिए, अगर गुरु हम कर नहीं पा रहे हैं, इसका एक कारण वो भी है कि अपना ईगो, अहम। किसी व्यक्ति के पास हम कैसे अपने को समर्पण कर दे, वो भी तो हम जैसा ही है। हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारा अहम किस प्रकार के बाधक के रूप में काम कर बैठता है। इसीलिए किसी के अधीन होकर के रहना और अपने अध्यात्म विकास करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए यहां देखिए आचार्य स्वयं कह रहे कि देखिए वो मेरे गुरु है, अगर जिनके हृदय में वो प्रज्ञान, वो ज्ञान प्रतिष्ठित है, जो कि चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत परमात्मा है, जिनके हृदय में वो चैतन्य दृढ़ है, चाहे वो क्यों ना निकृष्ट जोनी, चांडाल जोनी में ही क्यों ना हो, वो मेरे गुरु है। भगवत भक्तजन, आचार्य शंकर के ही एक गुरु स्तुति है, गुरुवाष्टकम, उसमें वो लिखते हैं, तुम्हारा शरीर सुंदर मिला, तुम्हारे धर्म पत्नी भी सुंदर है, तुम सदा रोग मुक्त हो, तुम्हारी यश जो है चारों तरफ फैला हुआ है, और तुम्हारा धन भी मेरु तुल्य है, अकूत धन है, परंतु अगर गुरु चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं है, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम, उससे क्या फल मिलने वाला है? शरीरम सुरूपम सदा रोगमुक्तम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम।

0: 9 श्लोक है और प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में जीवन के जो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उत्कर्ष, उन्नति, प्रतिष्ठा, मान सब है। और आचार्य अंतिम दो चरण में ये निवेदन करते हैं, गुरु रंगरी पद में मनस चेन लग्न तथा किम।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉटर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Arivattaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmarya sant ki kahani. Inka naam hai Arivattaya. Ye hame ek pramukh seekh dete hain. Inki kahani mein ye darshaya gaya hai ki sadharan manav badhaon ke aane par lakshya ke saath samjhauta kar lete hain. लेकिन जो इंसान पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ जीते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करते। पूर्ण निष्ठा और किसी भी विपत्ति के आने पर मार्ग से न हटने वाली दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य प्राण को भी त्याग देते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं त्यागते, इसलिए वे महान कहलाते हैं। कावेरी नदी के जल द्वारा संचित क्षेत्र है तंजावुर। तिरुवारूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में एक गांव था, कणमंगलम। उस गांव के निवासी एक समृद्ध कृषक परिवार में अरिवाल्तायर का जन्म हुआ था। युवावस्था से ही तायर ने संकल्प किया कि वह चंपा चावल का सुवासित अन्न, लाल साग और छोटे कच्चे आम का आचार भगवान को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। इसी सेवाकारी को उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। समय गुजरता गया, परिस्थितियां बदल गईं। धीरे धीरे अरिवाल्तायर के परिवार की आर्थिक दुरावस्था के दिन आ गए। उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। दूसरों के खेत में मजदूरी करके तायर अपना निर्वाह करने लगे। मजदूरी के रूप में मिले धान से वे भगवान को भोग लगाते, इधर उधर से साग एकत्र कर सब्जी बनाते और अमौरी के अचार के साथ भगवान को प्रदान कर देते। एक बार उन्हें मजदूरी में बढ़िया धान मिल गया। वे स्वयं तो भूखे थे, लेकिन अपनी भूख प्यास को भूलकर उन्होंने अन्न, साग और अमौरी को एक टोकरी में रखा और खेतों से गुजरते हुए मंदिर की ओर चल दिए। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी एक मिट्टी के पात्र में पंचगव्य लेकर साथ चल रही थी। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का पंचगव्य प्रतिमा के अभिषेक के लिए था। भूख और थकान के परिणाम स्वरूप अरिवाल ताहिर को चक्कर आ गया और वह किसी चीज से टकराए। पत्नी ने उन्हें पकड़ने की ढेर कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़े। भोग की सामग्री धरती पर बिखर गई और उन्होंने अरिवाल ताहिर ने तब कराह कर कहा, अनाथों के नाथ, दीनवत्सल भगवान शिव, आज मेरे ही कारण आपको भोग नहीं चढ़ाया गया और इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। यह सोचकर अरिवाल ताहिर ने फसल काटने वाले एक चाकू को धरती पर देखा और उससे अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया। तिल्लई चिदंबरम में अनंत नृत्य करते हुए प्रभु ने उनका हाथ उसी क्षण धरती की दरार से बाहर प्रकट हुआ और अरिवाल तायर का हाथ पकड़ लिया। भगवान का स्वर सुनाई दिया, वत्स, हमारी चिंता त्याग दो। ये लो, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए अर्पित अमौरी खा रहा हूं। दरार के अंदर से अमोरी दांत से काटने की चटक चटक आवाज सुनाई दी। अपना गर्दन चाकूस में फंसाकर काटने का प्रयास करने के कारण अरिवाल तायर का नाम अरिवाल तायर बना। अरिवाल का मतलब तमिल में चाकू होता है। प्रभु ने दर्शन दिए। नंदीश्वर ने पति पत्नी के भक्तिभाव की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिवलोक में स्थान दिया। अनेक संत और भक्त जनता की भूख मिटाने के उद्देश्य से अन्नदान को अपना जीवन का सर्वस्व समझते हैं। अरिवाल तायर ने खेत में उग रहे धन धान अमोरी से भगवान को भोग लगाया और एक दिन जब भोग नहीं लगा पाए तो इसके लिए उनके मन में इतनी ग्लानी पैदा हो गई कि वह अपने प्राण तक नौचावर करने को सक्षम हो गए। इसे कहते हैं एक उत्तम भक्त। इसलिए इस संत का नाम शिवलोक में बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: और वो जब ऑफिस जाए तो इंटरनेट खोल के सुन लिया कर, कोई जरूरत नहीं आने का। कल एक माता जी ने कहा, प्रेमपुरी आश्रम तो सर्वव्यापक भगवान जैसा सारा विश्व में व्यापक हो गया। प्रेमपुरी आश्रम व्यापक हो गया कैसे? इंटरनेट से। आज अमेरिका में आज का आज सुन लो प्रवचन, विश्व के किसी भी कोने में तुम तुरंत आज के आज ही सुन लो प्रवचन। ये प्रवचन तुम आज रात को 9:30 के बाद सुन लो घर में बैठ के, अभी जो मैं कर रहा हूं। हाँ, ये प्रेमपुरी आश्रम का देन है विश्व में, शायद इस तरह का लेटेस्ट आध्यात्मिक प्रवचनों को, विशाल प्रवचन की संपदा को इंटरनेट में देने वाला। हाँ, ये पहला है। तो इस बात के लिए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्टियों को धन्यवाद देनी चाहिए। वो है नहीं, वो तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने उसको संकेत किया है। आप लोगों के सोच अनुकूल ना होता तो वो क्या करता, वो प्राविधिक है वो, है ना। तो कल माताजी ने जो कहा ना, हमको बड़ा खुश, बड़ प्रसन्नता हुई कि आ, ये तो भगवान की तरह प्रेमपुरी आश्रम भी सर्वव्यापक हो गया है, देख लो। तो हमने उसको ये कहा, तो बड़ा कठिन होता था तो रोज पत्नी पतियों से डांट पड़ती थी, तो गोपियों को बहुत हैरानी हुई। तो किसी महात्मा के पास जाकर कहा कि महाराज, ये हमारा मन जो है ना, उसके चरण में चिपक गया है, वहां से निकालने के कोई उपाय है? है कहा। जब उद्धव जी गए तो सब क्या कर रहे थे, भागवत में लिखा है, जमुना के किनारे बसे प्राणायाम करके वहां से निकालने के लिए योग कर रही है। कैसे निकले? अब हम जोड़ने के लिए योग करते हैं, वो निकालने के लिए योग कर रही है। देखो, भवद अधीनम हृत पद्मम भवद अधीनम, उन ब्रजवालाओं का हृदय कमल तो परमात्मा के अधीन हो गया। तब उनको योगक्षेम बड़ा मुश्किल हो गया, व्यवहार चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन शंकराचार्य जी यहां एक नई बात करते हैं, यदि तुम्हारा मन हृदय भगवत अधीन हो गया तब तुरंत भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तब तुम्हारे हर योगक्षेम भगवान वहन करेंगे, तुमको चिंता ही नहीं करना। मन यदि भगवान के चरण में लग गया तो मेरा क्या होगा ये तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचने का काम किसका? भगवान परमात्मा का है, शिव का। ऐसे कई उदाहरण है भागवत में, कई उदाहरण है। हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज ने एक दृष्टांत दिया, किसी राज्य में एक बड़ा राजा था कहते हैं। वहां एक पानी के लिए नहर बनाना था सिंचाई का, कहीं से सरोवर से पानी लाना था गांव में सिंचाई के लिए। तो राजा की आज्ञा हो गई, राज आज्ञा कि सारे लोग जो है वह श्रमदान के लिए आ जाए, नहर खोदना है तो हर घर से एक आदमी जरूर आवे, हर घर से एक आदमी तो जरूर आवे और नहर खोदने का श्रमदान करे। पंजाबी भाषा में कार सेवा बोलते हैं, कार सेवा, कर सेवा को कार सेवा हो गया और कुछ नहीं है, सेवा करो तो श्रमदान करे। तो सब लोग अपने अपने घर से एक एक परिवार को भेज रहे थे। तो कहते एक बुढ़िया थी, बहुत बूढ़ी थी, वृद्ध थी, वो अपने घर में अकेले रहती थी और कोई था ही नहीं। वो हमेशा भगवान शिव के ही भक्ति ध्यान ज्ञान योग में लगी रहती थी, क्योंकि अब शरीर से कोई श्रम तो कर नहीं सकती थी, तो मन से हमेशा भगवान में चित्त को लगाए रखती थी। लेकिन राजा के कर्मचारी थे, जाके बुढ़िया को कहा, ए बुढ़िया, राजा की आज्ञा है हर घर से एक आदमी श्रमदान के लिए आना ही चाहिए, तेरे को चलना पड़ेगा। उसने कहा कि महाराज मैं तो इष्ट वृद्ध हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं तो कर नहीं सकती हूं। बोले हम नहीं जानते, राज आज्ञा है, तो घर स्वतंत्र घर में रह रही है, तो अकेले हो तो भी तू ही चल, मैं क्या करूंगी वहां जाकर, कैसे करूंगी। उसने कहा कि नहीं तो घर छोड़ के जा, ये राज्य का नहीं है, मैं राजा की आज्ञा है। बड़े दुखी हुई, क्या करूं। इतने में कहते हैं एक बटुक बच्चा आ गया, अनजान कहीं से आ गया। पूछा, माताजी क्या हो गया। बोले राजा की आज्ञा हो गई है कि श्रमदान के लिए जाना पड़ेगा, अब मैं ऐसी हूं, बूढ़ी हूं, मैं कैसे जाऊं, कुछ नहीं कर सकती हूं। तो उस बच्चा ने कहा, उस बालक ने कहा कि तुम्हारी तरफ से मैं जाता हूं, मैं जाऊं, तुम यहीं रहना, भोजन बनाना, मैं काम करके आऊंगा, मैं तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाऊंगा, तुम्हारे तरफ से हम हाजिरी लगा देंगे, इसलिए तुम राजदंड के भागी नहीं बनोगी, चिंता नहीं करना। वृद्ध माता ने कहा कि जाओ बेटा, अब मैं क्या करूं, ये तो अच्छा ही हुआ तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना के रखूंगी, काम करके आ जाना। कहते हूं बालक चला गया काम करने, और वहां जाके रजिस्टर्ड में लिख दिया, फलाने बुढ़िया के तरफ से मैं आया हूं। तो हो गया, हाजिरी हो गई, बुढ़िया की हाजिरी हो गई ना। कहते हैं बड़ा काम करने लगे, तो सब लोग टोकरी की मिट्टी निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी, बालक है ना, तो जल्दी जल्दी दौड़ के जाए और एक टोकरी मिट्टी फेंके, तब तक तो वो दो टोकरी फेंक दें। हाँ, लोगों को आश्चर्य, ये बालक किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका बेटा है। लोगों ने पूछा तू किसका बेटा है। बोले वो मां है ना एक, मैं उसका, तू उसका बेटा है, उसका तो कोई बेटा नहीं था, अकेले थी। बोले मैं उन्हीं का बेटा हूं, मैं कहीं बाहर था, आ गया था। अच्छा भाई, बड़ा भारी काम करे और फटाफट, और ने क्योंकि और एक टोकरी फेंके, वो दो टोकरी फेंक देवे, तो बाकी समय में वो वहीं खेलने लग जाए। जब कहते हैं कि एक बार जब राजा निरीक्षण करने आया, राजा जब निरीक्षण करने आया तो देखा वो खेल रहा था। राजा ने कहा कि ये कौन है, ये खेल रहा है, काम ना करके खेल रहा है, ये कौन है। बोले एक वो जो बूढ़ी है ना, बूढ़ी की तरफ से आया ये काम करने। तो राजा के सामने ही उस मंत्री ने जोर से एक डंडा मारा उस बालक को, मार डाला डंडा। आगे आएगा श्लोक, जोर से डंडा मारा, तू यार खेलने आया कि काम करने आया है, अपने आप भी काम नहीं करता और दूसरों का ध्यान बटा रहा है। मारा जोर से डंडा, भाग जाए यहां से। कहते जैसे डंडा मारा उस मंत्री ने तो भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए, भगवान शिव ही थे, देख लो। तो कहते शंकराचार्य जी मेरे पास डंडा भी नहीं है, मंत्री के पास तो डंडा था मारा और आप खुश हो गए, मेरे पास तो डंडा भी नहीं है, मैं मारूं क्या। आगे आएगा श्लोक, यही भाव यह प्रकट किया है। वास्तव में बाद में जो बुढ़िया को पता चला वो तो साक्षात शिव थे, तो क्या किया उसने, अपने मन को, बुढ़िया ने अपने मन को भगवान के अधीन कर दिया था, तो भगवान उसके अधीन होकर उसके तरफ से काम करने चले गए। ऐसे अनेक उदाहरण है, वो महाभारत में ये अनेक उदाहरण है, गीता में आया है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, कोई यदि मेरे को अपना हृदय समर्पण कर देता है, अनन्य चिंत्य हो जाता है, फिर उसको अपने योगक्षेम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूं। वहाम्य हम कहते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान गीता पर अपनी टीका लिख रहे थे, टीका लिखते लिखते इस श्लोक में पहुंच गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्य हम, मैं खुद वहन करता हूं, इसका अर्थ होता है। बोले भगवान क्या किसी का योगक्षेम वहन करेंगे, क्यों ढोएंगे योगक्षेम। ये वहाम्य में हम ये गलत हुआ है, इसका उच्चारण लिखने में प्रूफ मिस्टेक हुआ होगा, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा। वहाम्यम की जगह बदाम्यम करना चाहिए, मैं किसी को कह देता हूं फिर वह उसके योगक्षेम को पूरा कर देता है, वो खुद क्या वहन करेंगे योगक्षेम, भगवान बदाम्यम। कहते हैं वहाम्यम को काट के वहां बदाम्यम लिख दिया। वह क्या कि वह पंडित बड़े गरीब थे, लेकिन भगवान की निष्ठा थी, गीता पर बहुत निष्ठा थी, और उन्हीं की कृपा से गीता पर टीका लिख रहे थे। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है, ये सत्य घटना है। तो कहते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनको रोज दाल चावल सब्जी आटा लाकर वो बालक दिया करता था, अनजान कहीं से आता था, रोज कोई न कोई नया नया रूप धारण करके आवे, कभी कोई बालक आवे, कहीं कोई बालक आवे, कहीं कोई बालक आवे, पंडिताइन को वो दे दे और पंडिताइन उसको पकावे, रखे, तैयार करे, पंडित आराम से खाए और करने लग गए गीता के टीका लिखने लग गए।

इतना छोटा बालक, इतना मासूम बालक है और इसके मुख में क्यों ऐसी चोट मारा, क्यों मारा ऐसी तरह, आने दो पंडित को। वो तो चावल दाल दे गया और चला गया। पंडित जी जब खाना खाने आए तो पत्नी तो बिगड़ पड़ी, तुमने उस बालक के मुख में क्यों मारा भाई, बेचारा रो रहा था, इतना बड़ा घाव हुआ। पंडित विचार करने लगा कि मैंने तो किसी को मारा नहीं, क्या हुआ, मैंने तो किसी को ऐसा नहीं किया है। बोले हाँ वो बेटा कह गया, वो चावल रोज लाकर देता था, वही तो पका के तुमको खिलाती थी, मैं खाती थी, नहीं तो और कौन लाता, तुम कमा के ला रहे हो, तुम तो लगे रहे हो वही भगवान भगवान गीता की व्याख्या कर रहे हो, तुमको आटा दाल की चिंता है, वो तो बेचारा कहां से लेके आता है पता नहीं कौन है। कहते हैं पंडित जी ध्यान करने लगे तो उनको दिखा कि भगवान श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। वास्तव में योगक्षेम खूब बहन कर रहे थे, वो किसी को कह नहीं रहे थे, खुद कर रहे थे, हैं आटा दाल खुद लेकर आ रहे थे। ओहो, मैंने जो उनकी वाणी को काट दिया इसका मतलब उनके मुख में वो चोट पहुंची। ये ठीक बाह्म्य ही है, बदाम्यम नहीं। तुरंत जाके उन्होंने उसको सुधार लिया, सुधारा तो दूसरे दिन तो उसके मुख में घाव ही नहीं है, बेटा आ गया। बेटा तुम्हारा घाव ठीक हो गया? बोले हां ठीक हो। किसने ठीक किया? बोले तुम्हारे पति ने। बाय। फिर उसको समझ में नहीं आ गया क्या हो गया। पति से उसने कहा कि ऐसा ऐसा, आज तो उस बेटे का मुख बिल्कुल ठीक हो गया, तुमने कैसे ठीक कर दिया? मैंने पूछा तो कहा तुम्हारा नाम लिया ले रहा था, वो पंडित जी ने ठीक कर दिया, तुमने कैसे ठीक किया? तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ओहो योगक्षेम वहाम्य हम है, ये भगवान खुद बोलते, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। परमात्मा में तो कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी हमारे में है, है? परमात्मा तो आज भी हमारे अधीन होने के लिए तैयार है, पर हमारा मन, हमारा वृत्ति, चित्त वृत्ति परमात्मा के अधीन होना चाहिए। एक बार हमारा हृदय परमात्मा का अधीन हो जावे, परमात्मा हमेशा योगक्षेम वहन करने के लिए तैयार है। ये भाव यहां है। यदि यम मृत पद्मम यदि भवदधीनम पशुपते त्वदीयम यस्तम त्वदीयस्तम संभो भवसि भवभारम च वहसि। उसी के आप होते हैं और उसके भवभार, भवभार माने योगक्षेम, संसार की व्यवस्था, उसके सारी व्यवस्था पूरा करने के काम उनका। अखंडानंद जी महाराज जी ने योगक्षेम वहाम्य हम इस शब्द की व्याख्या में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। कहते हैं तुम लोगों को हंसने की बात भी कर दूं, गहरा वेदांत तो सुबह ही सुनने के लिए आओ, सुबह के प्रवचन एकदम डीप वेदांत, उसके लिए तो सुबह आओ, मिर्ची मसाला अभी होगा, इस समय चाट पकौड़े मिलेगा या मिर्ची मसाला सहित, सुबह तो शुद्ध वेदांत चलेगा वहां, थोड़ा मिर्ची भी डाल दे, मसाला भी डाल दे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने दृष्टांत दिया था। कहते एक पंडित जी योगक्षेम वहाम्य हम इस बात को पूरा निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा और हनुमान जी की सेवा करते थे। उनका नियम था रोज हनुमान जी के मंदिर में जाना और आसन लगा के बैठना और पूरा सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनका तो वही नियम था। कहते हैं उस पंडित जी की एक बेटी थी, थोड़ा जवान हो गई, मां बाप को चिंता होता ही है, लेकिन वहां केवल मां को चिंता हुई, बाप को चिंता नहीं हुई। यूं तो सब मां बाप को, दोनों को चिंता होती है, लेकिन उस पंडित के व्यवहार में यह हुआ, मां को बहुत चिंता हुई, बाप को चिंता ही नहीं। वो तो भगवान के भजन में लगा हुआ, निश्चिंत होकर।

0: सुबह ही जाए जल्दी उठकर पाठ करे, 12-1 बजे आए, फिर खा के थोड़ा आराम कर फिर जाए, फिर पाठ करे हनुमान जी की सेवा। तो कहते उस पंडित पत्नी ने कहा पंडित की, अरे तुम क्या रात दिन वही, बेटी जवान हो गई उसकी शादी करनी है। वो कहता है कि तुम क्यों चिंता करती हो, भगवान ने कहा योगक्षेम वाहम्यं, उसके सारी व्यवस्था मैं करता हूं कहा है, उसने कहा है तो करेगा, क्यों चिंता करती है। बोले ये कहते कहते 1 वर्ष हो गया, कब करेगा। बोले करेगा बेटा, तुम ज्यादा चिंता करती हो ना, करेगा, धैर्य रखो, हो जाएगा। तो एक दिन जो है पंडित जी प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में, और समय तो नहीं आता था उस दिन, पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि पत्नी बार बार उसको टोक रही थी, तो वो संस्कार दिमाग में आ गया। तो पाठ करते करते प्रार्थना करते करते बेटी जवान हो गई, शादी करनी थी, पैसा है नहीं, संपत्ति है ही नहीं, कोई साधन नहीं है, कैसे शादी करें, इतने दिमाग में आ गया और प्रार्थना करते जा रहे थे। तो सर्वांतरयामी तो हृदय में संकल्प आते ही वो तो उनको पता चली जाएगा, है ना, तुम कोई संकल्प करो और भगवान को पता न चले ये संभव नहीं। तुम संकल्प करो तुम्हारे पति को पता न चले, तुम्हारी पत्नी को पता न चले, ये संभव है, लेकिन परमात्मा को पता न चले ये संभव नहीं। तो परमात्मा को पता चल गया, हनुमान जी को पता चल गया, बेचारा चिंता में रह गया अचानक मेरी प्रार्थना करते करते। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने पंडित को संबोधन किया, पंडित तो चिंता न कर, तेरी बेटी की शादी के लिए कल 10,000 रुपया की व्यवस्था हो जाएगी। उस जमाने में 10,000 तो बहुत होता था, है? आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अब आज तुम 10,000 की जगह 10 करोड़ की मांग करो बेटी की शादी में। हम सुनते हैं ना बॉम्बे में ऐसे ऐसे धनपति भी हैं कि एक बेटी की शादी में 10 करोड़ क्या 50 करोड़ खर्चा करते हैं। हाँ ऐसा हम सुनते हैं, बताते हैं, उसने फलाना ने वो सीप में बड़ा भारी शादी की रचाई है, कोई एरोप्लेन ही चार्टर करते हैं, घूमते हैं और शादी करते हैं, है ना, बहुत है। लेकिन उस समय बहुत था वो 10,000 रुपया, कहा कि कल 10,000 मिल जाएगा, चिंता न कर। कहते हैं उसी पंडित के पीछे एक बनिया भी वो खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था हनुमान जी को। पंडित तो हनुमान जी की प्रार्थना में मस्त हुआ, हनुमान का कहा सुना नहीं, बनिया ने सुन ली। ये बनिया अन्यथा नहीं लेना, हो आपको बनिया नहीं कह रहा हूं मैं, बनिया माने बनिया वृत्ति वाला ने सुन ली, समझ गए कि नहीं, ये अर्थ ले लेना, मेरा लक्षणा वृत्ति ले लेना, बादशाह अर्थ लेके नहीं बैठना है। बनिया केवल वैश्य को बनिया कहते हैं ऐसा नहीं समझ लेना, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली, ब्राह्मण भी बनिया वृत्ति वाला हो सकता है, बनिया वृत्ति वाले ने सुन ली। तो कल 10,000 मिलेगा पंडित को, ऐसा करते हैं आज ही पंडित से समझौता कर लेते हैं, एग्रीमेंट। तुरंत जैसे वो पंडित जी पाठ करके प्रार्थना करके जाने लगे तो बनिया जाकर कहा पंडित जी देखो एक समझौता करते हैं। बोले क्या? आपको बेटी की शादी करनी है ना? बोले हां। ऐसा करते हैं आज मैं आपको 5,000 दे देता हूं, शर्त यह है कि कल जो दक्षिणा मिलेगी वो सब मुझे देना। पंडित ने विचार किया कि यहां रोज 1 पैसा भी नहीं मिल रहा है, अचानक 5,000 के एग्रीमेंट आ रहा है, क्यों छोड़े। बोले ठीक है 5,000 दे दो। तो बनिया ने फट से 5,000 दे दी, क्योंकि एक ही दिन में डबल हो जावे एक रात में, इससे बढ़कर और बिजनेस क्या हो सकता है, बोलो है? एक रात में डबल हो रहा है कि नहीं, उसने ये सोच ली, तो 5,000 दे दिया पंडित जी, चले गए 5,000 लेकर, जाके पंडिताइन को दिया, ले 5,000 है, अब बेटे की शादी होनी हो जाएगी, तैयारी करो। उसको पता नहीं था कि कल 10,000 मिलेगा। तो दूसरे दिन पंडित तो गया, प्रार्थना करने बैठ गया, बनिया भी पहुंच गया। तो अब मिलेगा तब मिलेगा, इसको दक्षिणा 10,000, अब मिलेगा तब मिलेगा, अब मिलेगा तब मिलेगा, है 12 बज गया, 1 बज गया, कोई भी दक्षिणा लेकर नहीं आ रहा है वहां। और कल कहा था भगवान ने 10,000 दक्षिणा मिलेगी तुमको, ये क्या बात है। पंडित तो अपने नियम अनुसार कुछ पाठ प्रार्थना सब कुछ किए, घर के चलने लगे। बेटा तुमने कहा था कि कल जो चढ़ेगा सब मुझे देना, तुम घाटे में चले गए, एक भी पैसा नहीं आया, देख लो। बेचारा पंडित के सामने मुख छोटा करके कहा कि हां देखो क्या करें, ये तो ऐसे ही होता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है महाराज, नीचे ऊपर होता ही है। पंडित के सामने तो उसने ठीक कर दिया। जब पंडित गए तो उसको गुस्सा आया, हनुमान जी को मारा एक थप्पड़ कि हनुमान भगवान होकर झूठ बोलते हो, मेरा 5,000 बेकार चला गया, भगवान होकर भी झूठ बोलते हो, मारा एक थप्पड़, तो वो हाथ वही चिपक गया। अब हाथ छोड़ाने चाहता है, छोड़ता ही नहीं, जोर लगा रहा है, और गुस्सा हो गया, मेरा 5,000 तो गया और ऊपर मेरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर लात मारा तो वो भी चिपक गया, लात भी चिपक गई। अब तो छूटने का नाम नहीं ले रहा है, रो रहा है। उधर बच्चे लोग विचार करने लगे, आज पिताजी गए कहां, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे, अभी तक दुकान नहीं पहुंचे, हमेशा हमसे पहले जाकर दुकान खोलते थे, अभी तक दुकान ही नहीं खुली है, कहां गए, हनुमान मंदिर जाते थे दर्शन करने, क्या हुआ। तो बच्चे लोग आए, क्योंकि चाबी तो उसी के झोले में था, किसके, पिता के। बच्चे लोग आए तो हनुमान से आलिंगन करके चिपक के बैठा था उसका बाप, कहे के पिताजी ये कौन सी भक्ति है, ऐसा भी कोई भक्ति होता है तो भगवान को चिपक के छाती से लगा के खड़े हो गए, इतना समय हो गया, दुकान खोलना था, चाबी लेकर बैठ गए, चलिए। बेचारा बाप रोने लगा, अरे बेटा मैंने पकड़ रखा हनुमान को, यही मूर्ख पकड़ रहा है मुझे, छोड़ नहीं रहा है, है? तो बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना, हे भगवान ये क्यों ऐसा किया, क्या अपराध हो गया मेरे पिताजी से, हैं? क्षमा करना महाराज, जो करना है, 1.25 किलो लड्डू कहो तो लड्डू ला के चढ़ाता हूं, हम चढ़ाते हैं, आप जो कहो वो करेंगे, आप हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज। बच्चों ने जब प्रार्थना की तो हनुमान ने कहा कि बेटा मैंने मेरे भक्त पंडित को 10,000 देने की बात कही है, 5,000 कल तेरे बाप ने दिया है, अब 5,000 उस पंडित को दे के आओ तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, समझे कि नहीं, उसकी बेटी की शादी करनी है। हाँ, तब वो बच्चे गए दौड़ कर उस पंडित को 5,000 दिया, तो तब जाकर ये कौन छूटा, बनिया छूटा हो, हाँ छूट गया, तब जाकर छूटा, तब विश्वास हुआ कि ओहो योगक्षेम वहां में हम, भगवान तो थप्पड़ मार के भी लेते हैं, हाँ उनको बहुत चिंता है भाई, कैसे व्यवस्था करनी है, किधर से व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्था वो करते हैं, लेकिन हम, वो बनिया तो कहेगा कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे लगता है उसने भी कभी किसी को थप्पड़ मारकर लिया था, समझे कि नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि व्यवस्था है, शास्त्रीय व्यवस्था है, कभी उसने किसी के थप्पड़ मारकर लिया था तो आज थप्पड़ मारकर देना पड़ रहा है, थप्पड़ खाकर देना पड़ रहा है। तो ये काम परमात्मा की है, ये बात योगक्षेमम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग, प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम, योगक्षेम बाहम्यम, यही तो कहा है, वही तो शंकराचार्य जी ने कहा। बटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित्
1: भवतु भव किम् तेन भवति यदीयम् हृत् पद्मम् यदि भवत् अधीनम् पशुपते त्वदीयस्त्वम् शम्भो भवसि भवभारम् च वहसि।
0: भक्त को ये बात पूरी तरह निष्ठा के साथ जीवन में अपनानी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें तो हमें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मन परमात्मा के चरण में लगे रहे, यही प्रार्थना उत्तम प्रार्थना है।
1: ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

त्वमयक्ष्मया यक्ष्मया त्वं त्वमयक्ष्मया परिपर्ययक्ष्मया त्वं त्वमयक्ष्मया परि अयक्ष्मया परिपर्ययक्ष्मया यक्ष्मया परिभुज भुज पर्ययक्ष्मया।

क्षिप्र विघ्नेश जनक क्षित्यंतर सामश्रित इत्यादिकुटिला प्रांत मंत्र सिंहासन स्थित क्षुद्र प्रयोग संहर्ता क्षुद्र वृक्ष कुठारिक क्षुद्राचल महावज्री क्षुद्र कर्मज्ञ।

ततो हचित्ते वांछितार्थांश लब्ध्वा सोऽस्योपासको भवति यैमां परमरहस्य शिवतत्त्वज्ञान विद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिषते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी।

दातव्यं शङ्करज्ञया गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्र

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Brahmasutra Srikantha Bhashyam, presented by K.S. Mageshwaran Nambudiri.
2: சத்யாத்ம சத்தா ரூபம்,
3: சத்யாத்மா இருக்கு, அந்த ஆகாச சரீரம் பிரம்மா, அதனுடைய வியாக்கியானமா இருக்கு. சத்யாத்மான்னு இருக்கு இல்லையா, சத்யாத்மா, சத்யாத்மா,
2: சத்தா ரூபம்,
3: சத்தா ரூபம் இத்தர்த்தம், சத்தா ரூப.
2: பிராணாராமம் பிராணஹ சகலாதார பூதா சிதம்பர சக்தி உச்சதே ஸ்வரூப பூதாயாம் தஸ்யாம் ஏவ ஆராமஹ யஸ்ய தத் பிராணாராமம்.
3: பிராண சப்தேனாபி சாயவ சிச்சக்தி உச்சதே, ஆகாச சப்தேன யதா சிச்சக்தி உச்சதே பிராண சப்தேனாபி சிச்சக்திரேவ உச்சதே.
2: மனஹ
3: தரிஹி பிரம்ம நோச்சதே என்று சிந்தனியம், சிச்சக்தி விசிஷ்டம் பிரம்ம, சிச்சக்தினா வேறொரு பதார்த்தம் இல்லை, அது பிரம்மத்தோடு சேர்ந்தது. அது
2: மன ஆனந்தம், மனசிய
3: மன ஆனந்தம் பிரம்மத்தினுடைய விசேஷணம், மன ஆனந்தம்,
2: மன ஆனந்தம்,
3: மன ஆனந்தம்,
2: மன ஏவ
3: அபிஷுத அர்த்தம் வந்து
2: மனசிய ஆனந்தஹ எஸ்
3: மனசி மனசியேவ
2: மனசி
3: ஏவா இல்லையா,
4: மனசிய ஆனந்தம், மனசி ஆனந்தஹ எஸ்ய
3: ரேவகாரஹ அதிகாரத்தை, மனசி ஆனந்தஹ,
2: மனசி ஆனந்தஹ எஸ்ய
3: மனசீதி லிஷந்தி சரீரே சுகம் இது வத உபச்சாரிக சப்தமியா அதிகரணத்து நிர்தேசக பாஷ்யே இது உபச்சாரிக இது பாஷ்யகாரை உபச்சாரிக ரூபேண உக்தம் மனசா ஆனந்தஹ இத்யவ விவக்ஷா மனக்கரணகத்வ விவக்ஷாயாம் ததைவ பவதி பரந்து மனசி இது சரீரே சுகம் இத்யுச்யதே கலு சரீரே சுகம் ஆத்மன்யவ சுகம் இது வக்தவ்யம் சரீராவச்சேதேன தத்வத்
2: அத்ராபி ஆனந்த இதி சிதம்பரம் பிரகிருதி உச்சதே
3: அத்ராபி ஆனந்த சப்தேனாபி தாசா ஏவ பிரகிருதி உச்சதே இப்போ பதத்ரயம் லப்தம் ஆகாஷ பதம் பிராண பதம் மனப்பதம் சிச்சக்தேஹே கதனாய
4: அத்ர மனஹ இதி ஈஸ்வரஸ்ய அந்தகரணம் இதி
3: ஐவம் சத்யம் ததேவ
4: சக்தி ஹி உச்சதே
3: மனஸ் சப்தேன சா மனஸ் சப்தேன அத்ர சா சக்தி ஹி உச்சதே இதி சர்வத்ர ந மனஸ் சப்தேன அத்ர சா சக்தி ஹி உச்சதே தாவதே
2: ததா ஸ்ரூயதே யதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ ந ஸ்யாத் இதி சாந்தி சமர்த்தம் சிவதாபன்னம்
3: தத்ராபி ஆனந்த இதி சிதம்பர பிரகிருதி உச்சதே ஆனந்த சப்தேனாபி சிதம்பர பிரகிருதிரேவ உச்சதே ஆகாஷ சப்தேனாபி சிதம்பர பிரகிருதிரேவ உச்சதே இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீர்கள், அதுக்கு பிரமாணம் என்ன கேட்டா அதுக்கு பிரமாணம் காமிக்கிறார்.
2: ததா ச ஸ்ரூயதே யதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ ந ஸ்யாத்
3: சாமானாதிகரணேன பிரயோக அஸ்தி அயம் ஆகாஷ ஆனந்தஹ இதி தரி ஆகாஷ சப்தேன அபி சஹா உச்சதே ஆனந்த சப்தேன அபி உச்சதே ஸ்ருதௌ யதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ ந ஸ்யாத் இதி அஸ்தி கோஹ்யேவ அன்யத் அன்யாத் கஹ ப்ராண்யாத் யதேஷ ஆகாஷ ஆனந்தோ ந ஸ்யாத் ஒரு வாக்கியம் அன்யாத் தெரியும் அன்யாத் அனிதி அனிதி ஸ்வசிதி பிராணிதி பிராயண சைவ அர்த்த ஸ்வசிதி பிராணிதி அனிதி சேஷ்டதே இத்யர்த்தேபி அனிதி இது அஸ்தி அந்யாத் கஹ சேஷ்டேதா கஹ பிராண்யாத் கஹ பிராண வியாபாரம் குறியாத் கஹ சுவாசோச்சுவாசம் குறியாத் இத்யுக்தி சர்வம் தததீனம் இது யதேஷ ஆகாஷ ஆனந்த ந ஸ்யாத் ஆகாஷ ஆனந்த இது ஏகைவ பதார்த்த ஆகாஷாத்மக ஆனந்த பரமாத்மா இது ந ஸ்யாத் அர்த்தம் பரமாத்மா இது ந ஸ்யாத் தரி கிம் சேஷ்டேதா இத்யவம் அந்தலோகத்வ ஸ்ருதே தாத்பரியம் பரமாத்மான்னு ஒரு பதார்த்தம் இல்லாத போனால் கிம் எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொல்றது இல்லையா, அந்த அர்த்தத்தில் ஸ்ருதி அவ்வளவுதான். அத்த எதேஷ ஆகாஷ ஆனந்த ந ஸ்யாத் ஆகாஷ ஆனந்தான்னு ஒரே பதார்த்தத்தை ரெண்டு வார்த்தையால சொல்லியிருக்கார். அதனால ஆகாஷ சப்தேனாபி ததேவ உச்சதே ஆனந்த சப்தேனாபி ததேவ உச்சதே இது அஸ்மாபி ஸ்வீகர்த்தும் சக்கியதே.
2: சாந்தி சமர்த்தம் சிவதாபந்தம்
3: சாந்தி சமர்த்தம் சாந்தியா சமர்த்தம் சாந்தி சமர்த்தம்
2: அமிர்தம் அநாதி
3: சிவத்வ சிவத்வ சம்பன்னம் शिवता शिवता इत्युक्ते शान्तिः इति मङ्गलम् शान्तिरेव शिवता शिवत्वं शिवता सम्पन्नम् इत्युक्ते शिवत्वविशिष्टं शिवम् इत्यर्थः अमृतम्
2: अमृतम् अनादिमुक्तम्
3: अमृतम् अनादिमुक्तम् अर्थः अनादिमुक्तः सदा मुक्तः नित्यमुक्तः इत्युक्ते जीवान् व्यावर्तयितुं
4: सोऽपि
3: मुक्तो भविष्यति
4: परन्तु
3: अनुग्रहवशात्
4: इदानीम् अत्र तु मुक्तिस्तु न प्राप्यते स्वतः वर्तते
3: बन्धोत्तरं मुक्तः नित्यमुक्तो न बन्धम् अप्राप्यैव नित्यमुक्तः परमात्मा मुक्तः इत्युक्ते पूर्वं बद्धः आसीत् न चिन्तनीयं परमात्मविषये मुक्तः मुक्तः इति शब्दः आगच्छति तर्हि परमात्मा अपि पूर्वं कदाचित् बद्धः आसीत् वा इति न चिन्तनीयं नित्यमुक्तः अनादिमुक्तः अत्र
2: सच्चिदानन्दरूपं परमाकाशस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपानन्दं ब्रह्मस्वरूपानन्दं मनसा एव अनुभवति बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति सिद्धं मन आनन्दम् इत्यनेन
3: तत्र चिच्छक्तिः मनस्सुन् सोल्रद् बोलिर्क मयापि न ज्ञायते द्रष्टव्यम् अग्रे स्पष्टी भवेत् पश्यामः अत्र सच्चिदानन्दरूपपरमाकाशरूपं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं परमाकाशरूपं यद्ब्रह्म तद्ब्रह्म किं करोति स्वरूपानन्दं मनसा एव अनुभवति मया उक्तं पूर्वमेव उक्तं बाह्यकरण अपेक्ष क्रियते
4: बाह्यकरण अपेक्षा नास्ति इत्युक्ते
3: बाह्यकरणानि न सन्ति एव न सन्ति अपेक्षापि नास्ति
4: सन्ति चेत् एव अपेक्षा नास्ति इति वक्तुं शक्यते
3: तथा विवक्षा नास्ति इति चिन्तयामि परमात्मनः बाह्यकरणानि न स्वीकर्तव्यानि वस्तुगत्या श्रुतिरेव न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इत्यस्य किञ्चित् सङ्कोचकरणेपि कश्चित् अर्थः वक्तव्यः खलु कृतानि बाह्यकरणनिरपेक्षम् इत्युक्ते बाह्यकरण तत्र भवतां प्रश्नकः बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति कदा वक्तव्यं बाह्यकरणानि सन्ति परन्तु अपेक्षा न क्रियते इति प्रसक्तिरेव नास्ति चेत् निरपेक्षम् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति तद् व्यवहर्तुं शक्यते अहं किं चिन्तयामि परमात्मनः अपेक्षा बाह्यकरणाभावेपि जीवानां बाह्यकरण अपेक्षा अस्ति खलु तर्हि जीवानां बाह्यकरणापेक्षा अस्ति इति कृत्वा आनन्दानुभवाय आनन्दानुभवाय जीवानां बाह्यकरणापेक्षा अस्ति इति कृत्वा परमात्मनोऽपि तथैव स्यात् इति प्रसक्तौ परमात्मनः बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति वक्तुं शक्यते परमात्मनः विषये बाह्यकरणनिरपेक्षम् इति वक्तुं परमात्मनः एव बाह्यकरणानि अपेक्षन्ते इति नास्ति बाह्यकरणसापेक्षः आनन्दः कुत्रचित् प्रसिद्धः खलु तत् परमात्मनो नास्ति इति वक्तुं शक्यते अप्रसक्तप्रतिषेधो नास्ति बाह्यकरणसापेक्षः आनन्दः अस्माकं वर्तते प्रसिद्धः जीवानां प्रसिद्धः सः तथा नास्ति परमात्मनः इति वक्तुम् एवं प्रयोगः सम्भवति
2: इदमेव ज्ञापकं ब्रह्मभावम् आपन्नानां मुक्तात्मनां निरतिशयस्वरूपानन्द अनुभवसाधनं बाह्यकरणनिरपेक्षम् अन्तःकरणम् अस्ति इति
3: मुक्तानामपि अन्तःकरणम् अस्ति तीर्मानम् इति वदतु मुक्तानामपि अन्तःकरणम् अस्ति बाह्यकरणं नास्ति तत्र किं ज्ञापकं किं प्रमाणम् इदमेव प्रमाणम् इदमेव ज्ञापकं कुतः परमात्मनः आनन्दानुभवाय स्वरूपानन्दानुभवाय मनः अपेक्षते मत इन्द्रियमाः कृता इल्या पाकणम् अग्रिमेषु तद् तत्पराणि अधिकरणानि आगच्छन्ति तदा स्पष्टी भवति मयापि पूर्णं निश्चित्य नोच्यते खलु अतः पङ्क्त्यर्थः उच्यते क्रमेण अस्माकम् आगच्छति सर्वम् इदानीं किमुक्तम् इति स्पष्टं परमात्मनः स्वरूपानन्दानुभवाय मनः अस्ति इति ज्ञायते तर्हि मुक्तानां मनः अस्ति इति लभ्यते अन्यथा तत् परमात्मना अपि नापेक्ष्येत சாதாரணமா எப்படி கேள்வி வரும் ஸ்வரூபானந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு எதுக்கு மனசு ஸ்வரூபம் தானே ததாபி பரமாத்மனா அஸ்தி இது ஞாயதே தத் கதம் கிமர்த்தம் கல்பியதே இத்யுக்தே ந கல்பியதே ஸ்ருத்யா உச்சதே இது கல்பிக்க முடியாது கல்பனை பண்ணவே முடியாது ஸ்வரூபமே ஆனந்தம் ஆயிடுத்துனா சுப்பிரகாசம் ஆயிடுத்துனா மனசு எதுக்குன்னு கேள்விதான் வரும் பரந்து ஸ்ருதிர் வததி மன ஆனந்தம் இது தரிஹி மனசகாரேண அனுபூயமான ஆனந்த இது வர்த்ததே தரிஹி முக்தானாமபி ததைவா இது நிச்சயதும் சக்யதே
2: अतः बाह्यकरण निरपेक्षेण शुद्धबोध शक्तिरूपेण मनसा स्वरूपानन्दम् अनन्तम् अनुभवत्।
3: ब्रह्म नित्यतृप्तम्, नित्यतृप्तत्वम् एवं रूपेण व्याख्यातव्यम्। इदानीं स्पष्टीकृत्य उक्तवान्, ततो गत्वा अयं विषयः कः स्पष्टीकृतः इदानीं पश्यतु। एकः अंशः उक्तः, बाह्यकरणनिरपेक्षेण शुद्धबोधशक्तिरूपेण मनसा, அந்த சிச்சக்தியை தான் மனசுன்னு சொல்றது, வேற தனி பதார்த்தம் இல்லை. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு திரவியம் தனி திரவியம் கிடையாது, அது அது மனசை ஸ்தாபனி பரமாத்மனா மனஹா இத்துக்கே எதுக்கு அங்கங்க ஓடுற ஏதோ ஒரு திரவியம் மாதிரி நினைக்க கூடாது. சிச்சக்தி, அந்த சிச்சக்தியை தான் மனசு வச்சிருக்கு தெரியுது.
4: ஆனந்த சப்தேனாபி சிச்சக்தி உச்சது.
3: ஆனந்த சப்தேனாபி
4: சிச்சக்தி அனுபவத்தும் எது எது மனஹா இத்துக்கே சோ ததபி சிச்சக்தி,
3: அப்படிதான் தெரியுது. சுத்த போத சக்தி ரூபேண
4: சிச்சக்தி சமவேதா சக்தி இது உச்சி. சிச்சக்தி சமவேதா சக்தி இது
3: சத்யம்.
4: தர்ஹி யதி மனஹ
3: உச்சதே தத் சக்திரேவ மனஹ இதி அன்யா அன்யத் கிம்பி மனஹ நோக்தம். இதானி பஷந்து பாஹ்ய கரண நிரபேக்ஷண சுத்த போத சக்தி ரூபேண மனசான் போட்டிருக்கு.
4: சுத்த போத சக்தி விசேஷ விசேஷ தர்ஹி ததபி மனஹ சமாயேன வக்தம்.
3: சமாயா இது நயாயிகானாம் ரீத்யா அஸ்தி, तथैव वक्तव्यं च नास्ति। मुक्तात्मनाम् ईश्वरस्य च मनोविशेषः अस्ति, मनोविशेषः अस्ति इति व्याख्यानम्। यतः अस्माकं रीत्या यादृशं मनः तादृशम् इति न चिन्तनीयम् इति कृत्वा मनोविशेषः अस्ति इत्यत्र इति नित्यतृप्तत्वस्य स्वार्थप्रयुक्तसृष्टिवैषम्यप्रसक्त्यभावसिद्धौ उपयोगमाः न तस्य कदापि इति अग्रे गतम्, व्याख्यानम् अग्रे गतम्। अस्तु, इदं क्रमेण स्पष्टीभवति। स्वकीयशक्त्या, स्वकीयशक्त्या इत्युक्तम् अनुभवः क्रियते इति अन्नमारि वदतु। तेन नित्यतृप्तम् इति उच्यते, बाह्यसांसारिकसुखलवापेक्षा न भवति इत्यर्थः। बाह्यसांसारिकसुखलवापेक्षा परमात्मा सृजति इत्युक्ते ऐदोर सुखं कडकिरदकः स्वस्य प्रयोजनं प्रयोजनाय सृजति इति न इति, तर्हि सृष्ट्या किञ्चित् कृत्वा तत्र प्रपञ्चं सृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवति इति नास्ति। आनन्दानुभवाय अन्यापेक्षा नास्ति। सृजति इत्युक्ते तस्य तत् कृत्यं वर्तते तावदेव।
2: स्वतःसिद्धनिरतिशयज्ञानवत्त्वम् अनादिबोधत्वम्,
3: अनादिबोधत्वम् इत्यस्य अर्थं लिखन्ति। स्वतःसिद्धनिरतिशयज्ञानवत्त्वम् अनादिबोधत्वम्, अनादिबोधत्वम् इति एकं पदं प्रयुक्तं खलु। तत्र एका शङ्का युष्माभिः कर्तव्या, परमात्मनः धर्माः खलु उच्यन्ते, एकैकं धर्मं योजयतु। परमात्मा सर्वज्ञः, तर्हि सर्वज्ञत्वं परमात्मनि अस्ति, तर्कसङ्ग्रहवत् योजयतु।
4: परमात्मा नित्यतृप्तः, तर्हि नित्यतृप्तत्वं ब्रह्मणि
3: वर्तते।
4: एवमेव अनादिबोधत्वम्, अनादिबोधः
3: அனாதிபோதா பரமாத்மன தர்ம சொல்ல வேண்டியதான, போதத்துவம் போதத்துல தானே இருக்கு. பசந்து சர்வஜ்ஞத்வம், நித்யதிருப்தத்வம், அனாதிபோதா பரமாத்மனி சர்வஜ்ஞத்வம் அஸ்தி, நித்யதிருப்தத்வம் அஸ்தி, அனாதிபோதா வர்த்ததே தானே சொல்லணும். அனாதிபோதத்வம் போட்டிருக்க, அனாதிபோதத்வம் போதைகள் அஸ்தி इत्युक्ते तत्र विग्रहः कर्तव्यः।
2: अनादिः बोधः यस्य,
3: सः अनादिबोधः, तस्य भावः अनादिबोधत्वम् इत्युक्ते अनादिबोधः इति अर्थः। प्रियः, अनादिः बोधः यस्य सः इति बहुव्रीहिं कृत्वा अनादिबोधः परमात्मा, तस्य भावः
4: अनादिबोधत्वम्
3: इत्युक्ते अनादिबोधः इत्येव।
2: यत् स्वरूपानन्द अनुभव साधनम् अन्तःकरणं ज्ञानं तद् अनादिसिद्धमेव।
3: स्वरूपानन्दानुभव साधनम् अन्तःकरणम्, पूर्वोक्तरीत्या चिच्छक्तिरूपम्,
4: अतः
2: अनादि
3: तदपि एकं ज्ञानं, ज्ञानात्मकपदार्थः, तदेव ज्ञानम्। इदानीं बोधो नाम इदानीं साधनभूतः कश्चन बोधः, अन्तःकरणं ज्ञानं तद् अनादिसिद्धमेव। तार्किकरीत्या पदार्थानाम् एकः परिचयः अस्माकमस्ति। इदानीं ज्ञानं, बोधः, आनन्दः एल्लामे ओट् ஞானாத்மக போதா ஆனந்தாத்மக என்னமோ வருது மாதிரி இருக்கு இல்லையா, பார்க்கலாம்.
2: அத்தஹ அநாதி போதம் பிரம்ம किञ्चित्
3: क्रमेण वेदान्त परिचयेन तादृशपदार्थानां निरूपणप्रक्रिया अवगन्तुं शक्यते. पश्यामः तेन अनादिबोधं ब्रह्म
2: संसारनिरवर्तकस्य ज्ञानस्य निवर्तकस्य ज्ञानस्य अनादिसिद्धत्वात् नित्यनिवृत्तिसंसारदोषं शान्तिसमृद्धम् अमृतम् इति श्रूयते.
3: ब्रह्म शान्तिसमृद्धम् अमृतम् इति श्रूयते. अमृतम् इत्युक्ते कदापि बन्धो नास्ति. शान्तिसमृद्धम् इत्युक्ते नित्या शान्तिः वर्तते, शिवत्वं वर्तते इत्युक्तम्. अनन्तरं संसारदोषशून्यत्वम् उक्तम्. एतत् सर्वं कथं? तत्त्वज्ञानं विना अस्माकं जीवानां यदा तत्त्वज्ञानं भवति तदा एवं भवति, शान्तिः भवति, तृप्तिर्भवति, सर्वं भवति. तर्हि परमात्मनः अपि तत्त्वज्ञानमस्ति वा इत्युक्ते अस्ति. कथमस्ति? नित्यं वर्तते. संसारनिवर्तकस्य ज्ञानस्य अनादिसिद्धत्वादिति परमात्मनः संसारनिवृत्तिः सर्वदा वर्तते इति. परमात्मनः संसारनिवृत्तिः सर्वदा वर्तते इति. संसारः इत्ययं पदार्थ एव परमात्मना सह खलु विद्यते. संसारविशिष्टः खलु. तर्हि संसारी इति वक्तव्यं? परमात्मा संसारी इति सुलकुडदा चुल्लि आहमे येन संसारविशिष्टश्चेत् संसारी इत्येव इति प्रश्नः भवति. संसारी न शृणोमः. तर्हि संसारनिवृत्तः, संसारनिवृत्तिः सर्वदा वर्तते इति पश्यन्तु. अर्थं पश्यतु. न अतः अनादिबोधं ब्रह्म अनादिबोधम् अनादिबोधं न अनादिः बोधः यस्य तत् अनादिबोधम् अनादियान तत्त्वज्ञानम् अद् अनादिया इरुक् ब्रह्मत्तिलिरुक् वन्दिर्तु. इदञ्च ज्ञानं कीदृशं? संसारनिवर्तकं. संसारनिवर्तकमान ज्ञानम् अनादिया इरुक्. तर्हि संसारलेपः कदापि न जातः इति कृत्वा ज्ञानस्य अनादिसिद्धत्वात् पठन्तु.
4: नित्यनिवृत्तसंसारदोषं
3: कदापि नास्ति इत्यर्थः. संसारदोषो नास्ति, संसारः नास्ति इति नोक्तं. संसारदोषो नास्ति. तर्हि संसारनिवृत्तिः इत्यपि केनाभिप्रायेण वक्तव्यः? संसारस्य निवृत्तिर्न, संसारप्रयुक्तः दोषो नास्ति इत्यर्थे. संसारङ्गे इरुकटो तत्प्रय संसारी इति कदा व्यवहारः? संसारी इति सम्बन्धविशेषेण. लोके बहुत्र इनि प्रत्ययः सम्बन्धविशेषेणैव वक्तव्यः. धनी इति कः उच्यते? धनं अस्य. विग्रहस्तु कथं? विग्रहः कथं वक्तव्यः? धनम् अस्य अस्ति इति धनी अवदा. धनमस्य अस्ति इत्युक्ते कुर्थ? सम्बन्धविशेषेण. येन केनचित् सम्बन्धेन न, स्वस्वामिभावसम्बन्धेन धनमस्ति चेदेव धनी इति व्यवहारः. न तु संयोगेन. कैल वचनृक् काशियर् बेङ्गलर् एवळु पणं तस्य अनुडे कैल वर्तते डैलि. परन्तु तस्य एवळु सम्बळमो अवदा सम्बळम्. धनी इति व्यवहारो नास्ति. सः प्रकारान्तरेण कदाचित् धनिकः स्यात् तदन्यत् इदनाल धनी सुलभं मुड्यात् इल्या. एतत् स्वस्वामिभावसम्बन्धेन धनं नास्ति. अपो धनी इति यप व्यवहारं न, स्वस्वामिभावसम्बन्धेन धनं यस्य वर्तते स एव धनी इति व्यवह्रियते. अन्धमाद्रि शिरडत्र संयोगमा इरुक्कलां. मया संयोगः कुत्रापि संयोगसम्बन्धेन इनिप्रत्ययः कदापि न भवति नोच्यते. स्थलविशेषेण, स्थलविशेषानुसारेण. अन्धमाद्रि संसारी इति कदा व्यवहारः? संसारेण सम्बन्धो वर्तते इत्येतावन्मात्रेण संसारी इति न. तत्प्रयुक्त रागद्वेष इच्छा मोहादि कोपाद एतत् दोषाः भवन्ति चेत् संसारी. संसारः अस्ति तावदेव. स्वस्वामिभावेन इत्यपि न. येन सम्बन्धेन इद इपडि वरुमो तेन सम्बन्धेन संसारः अस्ति चेत् संसारी इति. तर्हि परमात्मनि संसारसम्बन्धः अस्ति. तस्य शरीरमेव संसारः अस्तु नाम, तथापि परमात्मा संसारी इति नास्ति. कुतः? स्वस्वरूपं कुरिचिन्द्रुक. स्वस्वरूपज्ञानं विना यदा संसारसम्बन्धो भवति अपदा इदं वरु अदनुडे एफेक्ट् वरु इलना वरा. स्वस्वरूपं यस्य मुक्तेन ज्ञायते, ये मुक्ताः भवन्ति तेषां स्वस्वरूपज्ञानं वर्तते. तर्हि संसारसम्बन्धे सत्यपि सः संसारी न भवति इति यथा निरूपणीयं, तद्वत् परमात्मनः अपि निरूपणं कुर्वन्तु. तस्य संसारनिवर्तकं ज्ञानमस्ति इति. संसारनिवर्तकं ज्ञानं नेन संसारसम्बन्धप्रयुक्तानां दोषाणां लेपः लेपः वार्तः अद् तमिळ् वदतु संसारलेपः इत्यस्य पट्रतः शूलम् इत्युक्ते तत्प्रयुक्तमोह रागद्वेषमोहादिकं भवति चेत् अद् ओट्रदमर्थम् அது இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தேவையான தத்துவஜானம் அனாதியாகவே இருக்கு. தஸ்மாத் பரமாத்மனா சம்சார சம்பந்தே சத்யபி சம்சாரித்த வியவஹாரோ நாஸ்தி.
2: அந்யப்ரேஷ்யதா கார்பண்யரஹிதத்வேன ஸ்வவசீகிருத ஸ்வேதர சகல வஸ்துத்வம்

भगवत भक्तजन, श्लोक का अर्थ बड़ा ही सरल है। वो जो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता, संपूर्ण दृष्टि उस चैतन्य में, उस संविद में, उस ज्ञान में दे रहे हैं। जब तक साधक उस चैतन्य से परिचय नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके व्यवहार में शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर, जो पूर्व संस्कार से ग्रसित थे, ब्राह्मणत्व के अभिमान भी रहा और उस अभिमान को, उस अहम को दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ एक निकृष्ट वेश धारण करके आविर्भूत हुए। इस संसार में सबसे अछूत और उससे निकृष्ट जाति कुछ नहीं हो सकता है, वो है चांडाल, जो डेड बॉडी, मृत देह को जलाते हैं, स्मशान में रहते हैं, कुलाचार धर्माचार को, धर्म शास्त्र को अगर देखे तो उस चांडाल के अगर छाया भी स्पर्श हो जाए तो स्नान करने की विधि है। भगवत भक्तजन, व्यवहार में हम हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से शायद कुछ भेद को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु जब हम साधना करते हैं, चित्त को शुद्ध बनाना चाहते हैं, उस परम तत्व को अनुभव करना चाहते हैं, तब कहीं हमें इस ऊपर दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से अंदर की ओर जाना पड़ता है, जहां जाकर के बाह्य वेश, बाह्य आचार, बाह्य आकार, बाह्य प्रकार की कोई मूल्य होता नहीं। इसीलिए भगवान आदिदेव महादेव एक ऐसा रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, संपूर्ण मानवता को वो यह शिक्षा देने के लिए कि घोर से घोर तर जोनी में क्यों ना वो आए, वहां भी मैं ही हूं, चैतन्य रूप से प्रदीप्त मैं ही हूं। भगवत भक्तजन, उस चैतन्य को पहचान लेने से सर्वात्म भाव में आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। संपूर्ण भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा में जो साधनाएं हैं, उसमें नैतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कुछ भी आप निश्चय करके रखे, सभी धर्म ग्रंथों आचार्यों के मन में यही एकमात्र अभिलाषा है कि अपनी वेष्टिता, परिच्छिन्नता को त्याग करके सर्वात्मता को प्राप्त करे। इसलिए ऊपर की दृष्टि से आप सर्वधर्म समन्वय का कितना भी बड़ा आयोजन कर लीजिए नारायण, वो सर्वधर्म समन्वय होता नहीं है। जब तक इस अद्वैत चेतना तक आपकी दृष्टि न पहुंचे, तब तक भले ही हम एक मंच में अनेक लोग बैठ सकते हैं, भिन्न धर्मावलंबी, परंतु कहीं ना कहीं वो चैतन्यता से जो अलग है, ऐसा कह करके हम एकात्मता को प्राप्त नहीं कर सकते।
संपूर्ण व्यवहार हम उस चैतन्य से करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उस चैतन्य से बेखबर भी रहते हैं। कभी भी हम किसी मुर्दे मृत व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, करते हैं, क्यों? जो रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जो हमारे भावों को समझ सकते हैं, वो प्रदान उत्तर दे सकते हैं, उनसे ही हम व्यवहार करते हैं। तो आप अल्टीमेट किससे व्यवहार कर रहे हैं? किसी जड़ से, कोई बॉडी से, अथवा कोई और सत्ता है जो इस बॉडी के अंदर से अपने को अभिव्यक्त करता है और आपके भावों को, आपके आदर को, आपके श्रद्धा को ग्रहण करके वो अपनी तरफ से रेस्पॉन्स भी देते हैं। वो है कौन? इसीलिए छोटा सा बालक जन्म हुआ और पिता जाकर के उसको बड़ा प्यार से, लाड़ से उसको बुलाते हैं, तालियां बजाते उनके सामने। उनके बोध नहीं है, वाणी नहीं है, परंतु वो देख करके कुछ देर देखा, फिर मुस्कुरा दिए। नारायण, कभी भी हमने जानने की प्रयत्न किया कौन मुस्कुराया? उस बालक के कंठ स्वर नहीं है, अभी वाणी प्रकट नहीं है, उस बालक के रूपक ग्रहण सामर्थ्य उतना नहीं है, उस बालक के शब्द सामर्थ्य भी उतना प्रकट नहीं हुआ है, उस बालक के चेतना में भी उतनी प्रकटता नहीं है, फिर भी कौन है जो आपके आदर को, आपके स्नेह को, प्यार को समझा और अंदर से रिस्पॉन्स किया कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं? कौन है वो? जो चैतन्य है, वो जो सत्ता है, जिसको आप चैतन्य कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, कोई भी नाम लीजिए, आचार्य शंकर आदि महादेव के समक्ष उस चैतन्य को जिन्होंने जाना, और ऐसे ही कह रहे जो कि हमेशा स्फुट तरा जागृत अवस्था में, स्वप्न और सुषुप्ति में भी जो नित्य निरंतर प्रकाशमान है, केवल एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही नहीं, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुसु, ब्रह्मा से लेकर के एक चीटी, पिपीलिका चीटी तक जो एक सत्ता विराजमान है, वो दृष्टि हमें लानी है। इसलिए भगवत भक्तजन, जब तक हम उस चैतन्य, उस सत्ता से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारी साधना, हमारी आराधना पूरी नहीं हो सकती है। परिच्छिन्न रूप से जब तक आप साधना करते हैं, वो साधना के अधमाधम भाव है, उत्तम ब्रह्म सद्भाव उपनिषद कहते हैं। जिस चेतना में आप उस चैतन्य को अनुभव कर सकते हैं और उस चैतन्य में आपके सारी व्यवहार है, उस दिन आपके साधना आराधना पूर्ण की ओर जा सकती है। इसलिए सारा व्यवहार जो है ना, इस आकार प्रकार को लेकर के, और जब तक इस आकार और प्रकार को लेकर के आप व्यवहार करते हैं, तब तक निश्चित रूप से विकार है। आप विकार से रोक नहीं सकते हैं अपने को। और हमारी धर्म ग्रंथ आचार्य यह उपदेश देते हैं, इस विकार को अगर दूर करना है तो इस विकार के अंदर जो अविकार, इस रूप के अंदर जो अरूप, उस सत्ता से परिचय प्राप्त करो।
इसलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर ध्यान से देखा कि सामने जो उपस्थित है वो और कोई नहीं है, आदिदेव महादेव है, और उन्होंने अपना स्तुति उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जो चैतन्य सत्ता है, जो चित सत्ता है, जो सबके अंदर अनुस्यूत है, सैवा अहम, किस प्रकार से साधक स्व तक ले आते, सैवा अहम, वो चैतन्य ही मैं हूं। सैवा अहम न च दृश्य वस्तु इति, जो अपने से भिन्न नाम रूप रूप से पृथक रूप से प्रतीति गोचर है वो मैं नहीं हूं। वो जो चैतन्य है वो मैं हूं। दृढ़ प्रज्ञापियस्यास्ति चेत, ऐसा प्रज्ञा जिनके अंदर दृढ़ हो गया। महाराज जब सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तब तो लगता है कि वह चैतन्य है, वो मैं हूं, वो सर्वत्र ओतप्रोत है, जगत साक्षी के रूप में वही चैतन्य विद्यमान है। परंतु वो जो स्थिति है चैतन्य की प्राप्ति की, वो दृढ़तर नहीं होने हो सकता है अथवा होता नहीं है। आचार्य शंकर प्रार्थना में कह रहे हैं कि वो जो प्रज्ञा है, चैतन्य है, जिनके प्रज्ञा दृढ़ हो गया है, अर्थात जिनके सारा व्यवहार जो है चैतन्य में ही, चैतन्य के साथ ही होता है, यस्यास्ति चेत, अब अंतिम चरण में अपने व्यक्तित्व को समर्पण के एक भाव है, चांडालस्तु सतु दिजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम, चाहे वो घोरतर ज्योनि क्यों ना प्राप्त करता हो, चाहे वो चांडाल हो, वो मेरे गुरु है। भगवत भक्तजन अध्यात्म शास्त्र में अथवा अध्यात्म जीवन में गुरु के एक अपूर्वता है। इस व्यक्तित्व में ऐसा कोई है जो पूर्ण रूप से समर्पण करने नहीं देते हैं। परंतु जब भी हम आचार्य के जीवनी को देखते हैं, उनके ग्रंथ रचनाओं को देखते हैं, स्तुतियों को पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं उनके शब्द के द्वारा, हमेशा वो गुरु के प्रति एक अपूर्वता, एक अलग दृष्टि। इससे पूर्व भी हमने विचार किया एक बार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये, वहां पर भी आचार्य गुरु के प्रति एक समर्पण। इसलिए भगवत भक्तजन गुरु कौन है और जीवन में गुरु की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस पर अनेक चर्चाएं हम लोगों ने सुन रखा। परंतु जब कोई प्रतिष्ठित आचार्य, कोई अवतारी पुरुष जब उस गुरु तत्व के ऊपर कुछ कहते हैं, तो इतना तो निश्चय है कि गुरु जीवन में आवश्यक है एवं व्यक्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, उस चैतन्य सत्ता को पहचान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप एक ऐसे अदृश्य अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आपके लिए कोई नहीं है, अज्ञात वह जगत है, तो उस अज्ञात जगत में जाने के लिए कोई तो चाहिए जो आपको गाइड कर सके।
तो अतीन्द्रिय जगत में जो गाइड करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं, वही है गुरु। इसलिए अध्यात्म जीवन में गुरु की भूमिका अनन्य है। और कई लोगों के मन में ऐसा भी प्रश्न होता है कि जीवन में गुरु अवश्य किसी व्यक्ति को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए क्या? आपके इस प्रश्न के ऊपर अनेक तर्क, अनेक लॉजिक हो सकते हैं, परंतु नारायण इतना भी समझिए, अगर गुरु हम कर नहीं पा रहे हैं, इसका एक कारण वो भी है कि अपना ईगो, अहम। किसी व्यक्ति के पास हम कैसे अपने को समर्पण कर दे, वो भी तो हम जैसा ही है। हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारा अहम किस प्रकार के बाधक के रूप में काम कर बैठता है। इसीलिए किसी के अधीन होकर के रहना और अपने अध्यात्म विकास करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए यहां देखिए आचार्य स्वयं कह रहे कि देखिए वो मेरे गुरु है, अगर जिनके हृदय में वो प्रज्ञान, वो ज्ञान प्रतिष्ठित है, जो कि चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत परमात्मा है, जिनके हृदय में वो चैतन्य दृढ़ है, चाहे वो क्यों ना निकृष्ट जोनी, चांडाल जोनी में ही क्यों ना हो, वो मेरे गुरु है। भगवत भक्तजन, आचार्य शंकर के ही एक गुरु स्तुति है, गुरुवाष्टकम, उसमें वो लिखते हैं, तुम्हारा शरीर सुंदर मिला, तुम्हारे धर्म पत्नी भी सुंदर है, तुम सदा रोग मुक्त हो, तुम्हारी यश जो है चारों तरफ फैला हुआ है, और तुम्हारा धन भी मेरुतुल्य है, अकूत धन है, परंतु अगर गुरु चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं है, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम, उससे क्या फल मिलने वाला है?

0: गुरोरग्नि प्रद्मे मनश्चेन्न लग्ना ततः किम्। नौ श्लोक है और प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में जीवन के जो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उत्कर्ष, उन्नति, प्रतिष्ठा, मान सब है। और आचार्य अंतिम दो चरण में ये निवेदन करते हैं, गुरु रंग्री पद में मनश्चेन लग्न ततः किम।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Arivattaya Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmarya sant ki kahani. Inka naam hai Arivattaya. Ye hame ek pramukh seekh dete hain. Inki kahani mein ye darshaya gaya hai ki sadharan manav badhaon ke aane par lakshya ke saath samjhauta kar lete hain. लेकिन जो इंसान पक्के इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ जीते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य के साथ समझौता नहीं करते। पूर्ण निष्ठा और किसी भी विपत्ति के आने पर मार्ग से न हटने वाली दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य प्राण को भी त्याग देते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं त्यागते, इसलिए वे महान कहलाते हैं। कावेरी नदी के जल द्वारा संचित क्षेत्र है तंजावुर। तिरुवारूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में एक गांव था, कणमंगलम। उस गांव के निवासी एक समृद्ध कृषक परिवार में अरिवाल तायर का जन्म हुआ था। युवावस्था से ही तायर ने संकल्प किया कि वह चंपा चावल का सुवासित अन्न, लाल साग और छोटे कच्चे आम का आचार भगवान को प्रतिदिन अर्पित करेंगे। इसी सेवाकारी को उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। समय गुजरता गया, परिस्थितियां बदल गईं। धीरे धीरे अरिवाल तायर के परिवार की आर्थिक दुरावस्था के दिन आ गए। उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। दूसरों के खेत में मजदूरी करके तायर अपना निर्वाह करने लगे। मजदूरी के रूप में मिले धान से वे भगवान को भोग लगाते, इधर उधर से साग एकत्र कर सब्जी बनाते और अमौरी के अचार के साथ भगवान को प्रदान कर देते। एक बार उन्हें मजदूरी में बढ़िया धान मिल गया। वे स्वयं तो भूखे थे, लेकिन अपनी भूख प्यास को भूलकर उन्होंने अन्न, साग और अमौरी को एक टोकरी में रखा और खेतों से गुजरते हुए मंदिर की ओर चल दिए। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी एक मिट्टी के पात्र में पंचगव्य लेकर साथ चल रही थी। दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का पंचगव्य प्रतिमा के अभिषेक के लिए था। भूख और थकान के परिणाम स्वरूप अरिवाल तायर को चक्कर आ गया और वह किसी चीज से टकराए। पत्नी ने उन्हें पकड़ने की ढेर कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़े। भोग की सामग्री धरती पर बिखर गई और उन्होंने अरिवाल तायर ने तब कराह कर कहा, अनाथों के नाथ दीनवत्सल भगवान शिव, आज मेरे ही कारण आपको भोग नहीं चढ़ाया गया और इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। यह सोचकर अरिवाल तायर ने फसल काटने वाले एक चाकू को धरती पर देखा और उससे अपनी गर्दन काटने का प्रयास किया। तिल्लई चिदंबरम में अनंत नृत्य करते हुए प्रभु ने उनका हाथ उसी क्षण धरती की दरार से बाहर प्रकट हुआ और अरिवाल तायर का हाथ पकड़ लिया। भगवान का स्वर सुनाई दिया, वत्स, हमारी चिंता त्याग दो। ये लो, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए अर्पित अमौरी खा रहा हूं। दरार के अंदर से अमौरी दांत से काटने की चटक चटक आवाज सुनाई दी। अपना गर्दन चाकू में फंसाकर काटने का प्रयास करने के कारण अरिवाल तायर का नाम अरिवाल तायर बना। अरिवाल का मतलब तमिल में चाकू होता है। प्रभु ने दर्शन दिए। नंदीश्वर ने पति पत्नी के भक्तिभाव की प्रशंसा करते हुए उन्हें शिवलोक में स्थान दिया। अनेक संत और भक्त जनता की भूख मिटाने के उद्देश्य से अन्नदान को अपना जीवन का सर्वस्व समझते हैं। अरिवाल तायर ने खेत में उग रहे धन धान अमोरी से भगवान को भोग लगाया और एक दिन जब भोग नहीं लगा पाए तो इसके लिए उनके मन में इतनी ग्लानी पैदा हो गई कि वह अपने प्राण तक नौचावर करने को सक्षम हो गए। इसे कहते हैं एक उत्तम भक्त। इसलिए इस संत का नाम शिवलोक में बड़े आदर सत्कार से लिया जाता है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
5: और वो जब ऑफिस जाए तो इंटरनेट खोल के सुन लिया कर, कोई जरूरत नहीं है आने का। कल एक माता जी ने कहा, प्रेमपुरी आश्रम तो सर्वव्यापक भगवान जैसा सारा विश्व में व्यापक हो गया। प्रेमपुरी आश्रम व्यापक हो गया कैसे? इंटरनेट से। आज अमेरिका में आज का आज सुन लो प्रवचन, विश्व के किसी भी कोने में तुम तुरंत आज के आज ही सुन लो प्रवचन। ये प्रवचन तुम आज रात को 9:30 के बाद सुन लो घर में बैठ के, अभी जो मैं कर रहा हूं। हाँ, ये प्रेमपुरी आश्रम का देन है विश्व में, शायद इस तरह का लेटेस्ट आध्यात्मिक प्रवचनों को, विशाल प्रवचन की संपदा को इंटरनेट में देने वाला। हाँ, ये पहला है। तो इस बात के लिए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्टियों को धन्यवाद देनी चाहिए। वो नहीं, वो तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने उसको संकेत किया है। आप लोगों के सोच अनुकूल ना होता तो वो क्या करता? वो प्राविधिक है, वो है ना। तो कल माताजी ने जो कहा ना, हमको बड़ा खुश, बड़ प्रसन्नता हुई कि ये तो भगवान की तरह प्रेमपुरी आश्रम भी सर्वव्यापक हो गया है, देख लो। तो हमने उसको ये कहा, तो बड़ा कठिन होता था तो रोज पत्नी पतियों से डांट पड़ती थी, तो गोपियों को बहुत हैरानी हुई। तो किसी महात्मा के पास जाकर कहा कि महाराज, ये हमारा मन जो है ना, उसके चरण में चिपक गया है, वहां से निकालने के कोई उपाय है? कहा, जब उद्धव जी गए तो सब क्या कर रहे थे? भागवत में लिखा है, जमुना के किनारे बसे प्राणायाम करके वहां से निकालने के लिए योग कर रही है। कैसे निकले? अब हम जोड़ने के लिए योग करते हैं, वो निकालने के लिए योग कर रही है। देखो, भवद अधीनम हृत पद्मम भवद अधीनम, उन ब्रजवालाओं का हृदय कमल तो परमात्मा के अधीन हो गया। तब उनको योगक्षेम बड़ा मुश्किल हो गया, व्यवहार चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन शंकराचार्य जी यहां एक नई बात करते हैं, यदि तुम्हारा मन हृदय भगवत अधीन हो गया तब तुरंत भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तब तुम्हारे हर योगक्षेम भगवान वहन करेंगे, तुमको चिंता ही नहीं करना। मन यदि भगवान के चरण में लग गया तो मेरा क्या होगा ये तुमको सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचने का काम किसका? भगवान परमात्मा का है, शिव का। ऐसे कई उदाहरण है भागवत में, कई उदाहरण है। हमारे श्रद्धेय गुरु महाराज ने एक दृष्टांत दिया, किसी राज्य में एक बड़ा राजा था, कहते हैं वहां एक पानी के लिए नहर बनाना था, सिंचाई का, कहीं से सरोवर से पानी लाना था गांव में सिंचाई के लिए। तो राजा की आज्ञा हो गई, राज आज्ञा कि सारे लोग जो है वह श्रमदान के लिए आ जाए, नहर खोदना है तो हर घर से एक आदमी जरूर आवे, हर घर से एक आदमी तो जरूर आवे और नहर खोदने का श्रमदान करे। पंजाबी भाषा में कार सेवा बोलते हैं, कार सेवा, कर सेवा को कार सेवा हो गया और कुछ नहीं है, सेवा करो तो श्रमदान करे। तो सब लोग अपने अपने घर से एक एक परिवार को भेज रहे थे। तो कहते एक बुढ़िया थी, बहुत बूढ़ी थी, वृद्ध थी, वो अपने घर में अकेले रहती थी और कोई था ही नहीं। वो हमेशा भगवान शिव के हे भक्ति ध्यान ज्ञान योग में लगी रहती थी, क्योंकि अब शरीर से कोई श्रम तो कर नहीं सकती थी, तो मन से हमेशा भगवान में चित्त को लगाए रखती थी। लेकिन राजा के कर्मचारी थे, जाके बुढ़िया को कहा, ए बुढ़िया, राजा की आज्ञा है हर घर से एक आदमी श्रमदान के लिए आना ही चाहिए, तेरे को चलना पड़ेगा। उसने कहा कि महाराज मैं तो इष्ट वृद्ध हूं, मैं कैसे जाऊं, मैं तो कर नहीं सकती हूं। बोले हम नहीं जानते, राज आज्ञा है, तो घर स्वतंत्र घर में रह रही है, तो अकेले हो तो भी तू ही चल। मैं क्या करूंगी वहां जाकर, कैसे करूंगी। उसने कहा कि नहीं तो घर छोड़ के जा, ये राज्य का नियम है, राजा की आज्ञा है। बड़े दुखी हुई, क्या करूं। इतने में कहते हैं एक बटुक बच्चा आ गया, अनजान कहीं से आ गया। पूछा, माताजी क्या हो गया। बोले राजा की आज्ञा हो गई है कि श्रमदान के लिए जाना पड़ेगा, अब मैं ऐसी हूं, बूढ़ी हूं, मैं कैसे जाऊं, कुछ नहीं कर सकती हूं। तो उस बच्चा ने कहा, उस बालक ने कहा कि तुम्हारी तरफ से मैं जाता हूं, मैं जाऊं, तुम यहीं रहना, भोजन बनाना, मैं काम करके आऊंगा, मैं तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाऊंगा, तुम्हारे तरफ से हम हाजिरी लगा देंगे, इसलिए तुम राजदंड के भागी नहीं बनोगी, चिंता नहीं कर रहा। वृद्धा माता ने कहा कि जाओ बेटा, अब मैं क्या करूं, ये तो अच्छा ही हुआ तुम आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना के रखूंगी, काम करके आ जाना। कहते हूं बालक चला गया काम करने, और वहां जाके रजिस्टर्ड में लिख दिया फलाने बुढ़िया के तरफ से मैं आया हूं। तो हो गया, हाजिरी हो गई, बुढ़िया की हाजिरी हो गई ना। कहते हैं बड़ा काम करने लगे, तो सब लोग टोकरी की मिट्टी निकाल रहे हैं बाहर फेंक रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं बाहर फेंक रहे हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी, बालक है ना, तो जल्दी जल्दी दौड़ के जाए और एक टोकरी मिट्टी फेंके, तब तक तो वो दो टोकरी फेंक दें। हाँ, लोगों को आश्चर्य, ये बालक किसका बेटा है, किसका पोता है, किसका बेटा है। लोगों ने पूछा कि तू किसका बेटा है। बोले वो मां है ना एक, मैं उसका, तू उसका बेटा है, उसका तो कोई बेटा नहीं था, अकेले थी। बोले मैं उन्हीं का बेटा हूं, मैं कहीं बाहर था, आ गया था। अच्छा भाई, बड़ा भारी काम करे, और फटाफट और ने, क्योंकि और एक टोकरी फेंके वो दो टोकरी फेंक देवे, तो बाकी समय में वो वहीं खेलने लग जाए। जब कहते हैं कि एक बार जब राजा निरीक्षण करने आया, राजा जब निरीक्षण करने आया तो देखा वो खेल रहा था। राजा ने कहा कि ये कौन है, ये खेल रहा है, काम न करके खेल रहा है, ये कौन है। बोले एक वो जो बूढ़ी है ना, बूढ़ी की तरफ से आया ये काम करने। तो राजा के सामने ही उस मंत्री ने जोर से एक डंडा मारा उस बालक को, मार डाला डंडा। आगे आएगा श्लोक, जोर से डंडा मारा, तू यहां खेलने आया कि काम करने आया है। अपने आप भी काम नहीं करता और दूसरों का ध्यान बटा रहा है। महाराज जोर से डंडा, भाग जा यहां से। कहते जैसे डंडा मारा उस मंत्री ने तो भगवान वहां साक्षात प्रकट हो गए, भगवान शिव ही थे, देख लो। तो कहते शंकराचार्य जी मेरे पास डंडा भी नहीं है, मंत्री के पास तो डंडा था, मारा और आप खुश हो गए, मेरे पास तो डंडा भी नहीं है, मैं मारूं क्या। आगे आएगा श्लोक है, यही भाव यह प्रकट किया है। वास्तव में बाद में जो बुढ़िया को पता चला वो तो साक्षात शिव थे, तो क्या किया उसने, अपने मन को, बुढ़िया ने अपने मन को भगवान के अधीन कर दिया था, तो भगवान उसके अधीन होकर उसके तरफ से काम करने चले गए। ऐसे अनेक उदाहरण है, वो महाभारत में ये अनेक उदाहरण है, गीता में आया है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, कोई यदि मेरे को अपना हृदय समर्पण कर देता है, अनन्य चिंत्य हो जाता है, फिर उसको अपने योगक्षेम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूं। वहाम्य हम कहते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान गीता पर अपनी टीका लिख रहे थे, टीका लिखते लिखते इस श्लोक में पहुंच गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्य हम, मैं खुद वहन करता हूं, इसका अर्थ होता है। बोले भगवान क्या किसी का योगक्षेम वहन करेंगे, क्यों ढोएंगे योगक्षेम, ये वहां में हम ये गलत हुआ है। इसका उच्चारण लिखने में प्रूफ मिस्टेक हुआ होगा, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, वहाम्यम की जगह बधाम्यम करना चाहिए। मैं किसी को कह देता हूं फिर वह उसके योगक्षेम को पूरा कर देता है, वो खुद क्या वहन करेंगे योगक्षेम, भगवान बधाम्यम। कहते हैं वहाम्यम को काट के वहां बदाम्यम लिख दिया। वह क्या कि वह पंडित बड़े गरीब थे, लेकिन भगवान की निष्ठा थी, गीता पर बहुत निष्ठा थी, और उन्हीं की कृपा से गीता पर टीका लेख रहे थे। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है, ये सत्य घटना है। तो कहते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनको रोज दाल चावल सब्जी आटा लाकर वो बालक दिया करता था, अनजान कहीं से आता था, रोज कोई न कोई नया नया रूप धारण करके आवे, कभी कोई बालक आवे, कहीं कोई बालक आवे, कहीं कोई बालक आवे, पंडिताइन को वो दे दे और पंडिताइन उसको पकावे, रखे, तैयार करे, पंडित आराम से खाए और करने लग गए, गीता के टीका लिखने लग गए। एक दिन वह बालक, एक बालक आटा दाल घी तेल सब लेके आ गया, माताजी ये लो पकाओ खाओ। तो उस माता ने देखा उसके मुख में घाव हुआ, उस बालक के मुख में तो घाव हुआ। उसने पूछा बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारे मुख में कल तो था नहीं, आज ये घाव कैसे हो गया। बोले आपके पंडित जी ने ऐसा कर दिया। पंडिताइन तो बड़े गुस्से में हो गई, भाई ये पंडित का क्या दिमाग फिर गया, भाई इतना छोटा बालक, इतना मासूम बालक है और इसके मुख में क्यों ऐसी चोट मारा, क्यों मारा ऐसी तरह, आने दो पंडित को। वो तो चावल दाल दे गया और चला गया। पंडित जी जब खाना खाने आए तो पत्नी तो बिगड़ पड़ी, तुमने उस बालक के मुख में क्यों मारा भाई, बेचारा रो रहा था, इतना बड़ा घाव हुआ। पंडित विचार करने लगा कि मैंने तो किसी को मारा नहीं, क्या हुआ, मैंने तो किसी को ऐसा नहीं किया है। बोले हाँ वो बेटा कह गया, वो चावल रोज लाकर देता था, वही तो पका के मैं तुमको खिलाती थी, मैं खाती थी, नहीं तो और कौन लाता, तुम कमा के ला रहे हो, तुम तो लगे रहे हो भगवान, भगवान गीता की व्याख्या कर रहे हो, तुमको आटा दाल की चिंता है, वो तो बेचारा कहां से लेके आता है पता नहीं कौन है। कहते हैं पंडित जी ध्यान करने लगे तो उनको दिखा कि भगवान श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। वास्तव में योगक्षेम खूब बहन कर रहे थे, वो किसी को कह नहीं रहे थे, खुद कर रहे थे, है आटा दाल खुद लेकर आ रहे थे। ओहो, मैंने जो उनकी वाणी को काट दिया इसका मतलब उनके मुख में वो चोट पहुंची। ये ठीक बाह्म्य ही है, बदाम्यम नहीं। तुरंत जाके उन्होंने उसको सुधार लिया। सुधारा तो दूसरे दिन तो उसके मुख में घाव ही नहीं है। बेटा आ गया, बेटा तुम्हारा घाव ठीक हो गया? बोले हां ठीक हो। किसने ठीक किया? बोले तुम्हारे पति ने। बाय। फिर उसको समझ में नहीं आ गया क्या हो गया। पति से उसने कहा कि ऐसा ऐसा, आज तो उस बेटे का मुख बिल्कुल ठीक हो गया, तुमने कैसे ठीक कर दिया? मैंने पूछा तो कहा तुम्हारा नाम लिया ले रहा था, वो पंडित जी ने ठीक कर दिया, तुमने कैसे ठीक किया? तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा। ओहो, योगक्षेम वहाम्य हम है, ये भगवान खुद बोलते, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। परमात्मा में तो कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी हमारे में है, है? परमात्मा तो आज भी हमारे अधीन होने के लिए तैयार है, पर हमारा मन, हमारा वृत्ति, चित्त वृत्ति परमात्मा के अधीन होना चाहिए। एक बार हमारा हृदय परमात्मा का अधीन हो जावे, परमात्मा हमेशा योगक्षेम वहन करने के लिए तैयार है। ये भाव यहां है। यदि यम मृत पद्मम यदि भवदधीनम पशुपते त्वदीयम यस्तम त्वदीयस्तम संभो भवसि भवभारम च वहसि। उसी के आप होते हैं और उसके भवभार, भवभार माने योगक्षेम, संसार की व्यवस्था, उसके सारी व्यवस्था पूरा करने के काम उनका। अखंडानंद जी महाराज जी ने योगक्षेम वहाम्यहम् इस शब्द की व्याख्या में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया। कहते हैं तुम लोगों को हंसने की बात भी कर दूं, गहरा वेदांत तो सुबह ही सुनने के लिए आओ, सुबह के प्रवचन एकदम डीप वेदांत, उसके लिए तो सुबह आओ, मिर्ची मसाला अभी होगा, इस समय चाट पकौड़े मिलेगा या मिर्ची मसाला सहित, सुबह तो शुद्ध वेदांत चलेगा। वहां थोड़ा मिर्ची भी डाल दे, मसाला भी डाल दे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने दृष्टांत दिया था। कहते एक पंडित जी योगक्षेम वहाम्यहम् इस बात को पूरा निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा और हनुमान जी की सेवा करते थे। उनका नियम था रोज हनुमान जी के मंदिर में जाना और आसन लगा के बैठना और पूरा सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनका तो वही नियम था। कहते हैं उस पंडित जी की एक बेटी थी, थोड़ा जवान हो गई, मां बाप को चिंता होता ही है, लेकिन वहां केवल मां को चिंता हुई, बाप को चिंता नहीं हुई। यूं तो सब मां बाप को दोनों को चिंता होती है, लेकिन उस पंडित के व्यवहार में यह हुआ, मां को बहुत चिंता हुई, बाप को चिंता ही नहीं। वो तो भगवान के भजन में लगा हुआ निश्चिंत होकर, सुबह जाए जल्दी उठकर पाठ करे, 12-1 बजे आए, फिर खा के थोड़ा आराम कर, फिर जाए फिर पाठ करे हनुमान जी की सेवा। तो कहते उस पंडित पत्नी ने कहा पंडित की, अरे तुम क्या रात दिन वही रात दिन वही, बेटी जवान हो गई उसकी शादी करनी है। वो कहता है कि तुम क्यों चिंता करती हो, भगवान ने कहा योगक्षेम वहाम्यहम् हो, उसके सारी व्यवस्था मैं करता हूं कहा है, उसने कहा है तो करेगा, क्यों चिंता करती है? बोले ये कहते कहते 1 वर्ष हो गया, कब करेगा कब करेगा? बोले करेगा बेटा, तुम ज्यादा चिंता करती हो ना, करेगा, धैर्य रखो, हो जाएगा हो जाएगा। तो एक दिन जो है पंडित जी प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में, और समय तो नहीं आता था उस दिन, पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि पत्नी बार बार उसको टोक रही थी, तो वो संस्कार दिमाग में आ गया। तो पाठ करते करते प्रार्थना करते करते बेटी जवान हो गई, शादी करनी थी, पैसा है नहीं, संपत्ति है ही नहीं, कोई साधन नहीं है, कैसे शादी करें, इतने दिमाग में आ गया और प्रार्थना करते जा रहे थे। तो सर्वांतरयामी, तो हृदय में संकल्प आते ही वो तो उनको पता चल ही जाएगा, है ना। तुम कोई संकल्प करो और भगवान को पता न चले, ये संभव नहीं। तुम संकल्प करो, तुम्हारे पति को पता न चले, तुम्हारी पत्नी को पता न चले, ये संभव है, लेकिन परमात्मा को पता न चले ये संभव नहीं। तो परमात्मा को पता चल गया, हनुमान जी को पता चल गया, बेचारा ये चिंता में रह गया अचानक मेरी प्रार्थना करते करते। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने पंडित को संबोधन किया, पंडित तो चिंता न कर, तेरी बेटी की शादी के लिए कल 10,000 रुपया की व्यवस्था हो जाएगी। उस जमाने में 10,000 तो बहुत होता था, है? आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं। अब आज तुम 10,000 की जगह 10 करोड़ की मांग करो बेटी की शादी में। हम सुनते हैं ना, बॉम्बे में ऐसे ऐसे धनपति भी हैं कि एक बेटी की शादी में 10 करोड़ क्या 50 करोड़ खर्चा करते हैं। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं, बताते हैं, उसने फलाना ने वो सीप में बड़ा भारी शादी की रचाई है, कोई एरोप्लेन ही चार्टर करते हैं, घूमते हैं और शादी करते हैं, है ना, बहुत है। लेकिन उस समय बहुत था वो 10,000 रुपया। कहा कि कल 10,000 मिल जाएगा, चिंता न कर,